मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो चुके हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में

0: पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

सुबह सवेरे सूरज की किरणें पूरब के आसमान से उतरती हैं और रात का अंधियारा उसकी सफेदी में घुलता जाता है। हवाएं पत्तियों पर फिसलती हैं, उन्हें दुलारती, उन्हें पोछ देती हैं, हमें ये बताने के लिए कि उजियारे ने कल के सारे पश्चाताप धो दिए हैं और आज का दिन हमें परमात्मा ने दिया है कुछ नया, कुछ बेहतर करने के लिए, नवसृजन के लिए। नवसृजन का ये संकल्प जीवन के लिए हो, प्रकृति के लिए हो, जीवनदायिनी मातृभूमि के लिए हो, जिसका गुण गौरव सदियां गाती रही हैं। तो आइए वंदना का प्रथम पुष्प इस धन्य धरा को अर्पित करें, जिसके दर्शन ने, जिसकी सनातन संस्कृति ने भारत को विश्व गुरु का मान दिलवाया।

ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम का मार्ग है, और जहां प्रेम है वहां प्रतीक्षा है। जिसने हमें बनाया उस पर सब कुछ छोड़कर उसकी राह देखने का मार्ग। पूर्ण समर्पण के साथ इस प्रतीक्षा से ही ज्ञान आता है। ये ज्ञान उस प्रतीक्षा का प्रसाद है, उस परमेश्वर का मुक्त दान है। विशुद्ध प्रेम से भरकर संपूर्ण समर्पण के साथ उसकी पुकार ही इस मार्ग पर चलने की एकमात्र विधि है।

ईश्वर का नाम सिर्फ अक्षरों का जोड़ नहीं है, नाम एक संपूर्ण अस्तित्व है, परिपूर्ण ऊर्जा है। इसीलिए नाम स्मरण के साथ

ही हमारा भीतर पवित्र और आनंदित होने लगता है। ये नाम का ही प्रभाव है कि हरि नाम सुमिरन के साथ ही जीवन में स्वतः अच्छाई और सच्चाई उतरने लगती है, शुभता जीवन को आलोकित करने लगती है।

चाहे हमने शास्त्र न पढ़े हों, संतों की वाणी न सुनी हो, लेकिन बिना किसी चाह के, बिना किसी स्वार्थ के अगर हम प्रभु का स्मरण करें तो ऐसे स्मरण से हमारे भीतर की चेतना डोलने लगती है। पूरे भाव के साथ किया गया हरि नाम स्मरण सीधे प्रभु तक पहुंचता है और उसकी रोशनी से हृदय जगमगा उठता है।

भक्ति हमारे भीतर की एक प्यास है। भक्ति हमारी सारी आकांक्षाओं की व्यर्थता का निवेदन है। आराध्य के चरणों में ही भक्त के सारे तीर्थ, सारे धाम होते हैं, क्योंकि प्रभु तक न तो ज्ञान से पहुंचा जा सकता है और न ही कर्मकांड से। प्रभु चरणों से प्रीत की जो लौ भीतर जल जाती है, वही आगे का मार्ग प्रशस्त करती है।

ये थी आज सुबह की भजन यात्रा वंदना। गायक कलाकार थे अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, प्रकाश पारनेरकर, राजेंद्र काचरू और हरिहरन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर

में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

0: श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी भोपाल से, और अब समय है चिंतन का।
1: गांधी जी ने एक बार दिल्ली में प्रार्थना के पश्चात अपने प्रवचन में कहा था कि हमें एक एक मिनट का ध्यान रखना चाहिए और कार्यों को समय अनुसार निश्चित कर लेना चाहिए। वे जो कहते थे उस पर स्वयं भी आचरण करते थे। उनका सारे दिन का कार्यक्रम उनके पास होता था और वे एक मिनट भी इधर उधर नहीं होते थे। एक बार अमेरिका के विख्यात पत्रकार लुई फिशर उनसे मिलने के लिए सेवाग्राम गए। गांधी जी ने उन्हें मुलाकात के लिए 4-5 मिनट दिए। जब समय पूरा हो गया तो गांधी जी ने अपनी घड़ी उन्हें दिखाई और कहा कि आप जाएं। लुई फिशर ने इस बात के संबंध में अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि गांधी जी ही संसार भर में एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मुझे घड़ी दिखाकर ये बताया कि अब मैं उनका अधिक समय न लूं। गांधी जी जितना समय किसी कार्य के लिए नियत करते थे उतना ही समय उस कार्य में व्यय करते थे। एक बार ब्रैडला हॉल की कॉन्फ्रेंस वालों ने उनसे प्रार्थना की कि वे 8 बजे उनकी बैठक में सम्मिलित हों, और गांधी जी वहाँ ठीक 8 बजे पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई

0: आया नहीं तो वे 5 मिनट प्रतीक्षा कर चले गए और जाते समय वे ये संदेश छोड़ गए कि जब मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे सूचना दे देना। उन्होंने उस समय न तो क्रोध प्रकट किया और न ही कोई ऐसा शब्द मुख से निकाला जो किसी को बुरा लगे। जिस शांति के साथ वे आए थे वैसे ही वापस चले गए। अंग्रेजी में कहावत है, समय उतना ही मूल्यवान है जितना कि धन। निश्चय ही समय धन से भी कहीं अधिक मूल्यवान, कहीं ज्यादा कीमती है। धन तो आता जाता रहता है लेकिन बीता हुआ समय किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। जिसने समय के मूल्य को समझकर पहचान लिया ऐसे पुरुष भाग्यशाली है क्योंकि वही जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। हम में से अधिकांश लोगों का ये अनुभव रहा होगा कि वे किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निश्चित समय पर बुलाए जाते हैं और वो कार्यक्रम निश्चित समय से 1.5 घंटे या 1 घंटे या कभी कभी 2 घंटे बाद शुरू होता है। जो लोग समय पालन का ध्यान रखकर समय पर पहुंच जाते हैं उन्हें अधिकांश लोगों की उपस्थिति के अभाव में प्रतीक्षा की घड़ियां यूं ही बर्बाद करनी पड़ती हैं। इस तरह पता नहीं कितने लोगों का हमारे देश में यूं ही समय नष्ट होता रहता है। प्रायः हम समय का मूल्य ठीक से नहीं आंकते। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समय भार स्वरूप लगता है। वे उसे काटने के लिए अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं और तरह तरह के साधन जुटाते रहते हैं। कुछ एक लोग समय के महत्व को समझते जरूर हैं लेकिन उसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पाते। बहुत कम लोग समय का सही मूल्यांकन भी करते हैं और उसका पूर्णतः सदुपयोग भी। इतिहास गवाह है कि ऐसे ही लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर अपना नाम कमा पाए हैं। आलस ही वो कारण है जिसकी वजह से हम समय पालन करने में कतराते हैं। इसके सामने हम जितना झुकते जाते हैं वो उतना ही हावी होता जाता है। समय पालन में अड़ंगा डालने वाले कई कारण हैं और ऐसे लोग ये निश्चित करते हैं कि अमुक काम अमुक समय पर कर लेंगे लेकिन जब समय निकट आता है फिर बाद में शुरू कर लेंगे सोचकर टाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि समय पर काम नहीं होने से जीवन में विफलता मिलना शुरू हो जाती है। गांधी जी के पास मुलाकातियों का तांता बंधा रहता था और दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें हमेशा घेरे ही रहती थी, फिर भी वे देश विदेशों के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विमर्श, अखबारों में लेख लिखने के अलावा नियमित समय पर प्रातः भ्रमण और प्रार्थना समय में हेर फेर नहीं करते थे। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से आए पत्रों के जवाब भी अक्सर वे अपने हाथ से ही लिखकर भेजते थे। इसमें संदेह नहीं कि समय का पालन के मार्ग में कठिनाइयां अवश्य आती हैं लेकिन यदि हम उन्हें दृढ़ता से दूर करते जाएं तो न केवल समय के पाबंद बन जाएंगे बल्कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और चहुमुखी प्रगति कर सकेंगे।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: बताना चाहता हूँ, जैसा कि आम तौर पर आजकल ये देखने में आया है कि खेत में बीज की बुवाई के लिए मजदूर की उपलब्धता दिन ब दिन कम होती जा रही है और आगे और कम होने की आशा है, तो इस समय हमें कृषि उपकरणों का उपयोग बहुत ही करने की ज़रूरत है। इस दिशा में ज़्यादातर देखने में यह आता है कि किसान अभी भी बीज का छिड़काव करते हैं, तो उसके बजाय मेरा ये कहना है कि उनको जो भी कृषि उपकरण आपको उपलब्ध हो सके उनका उपयोग करके आप कतार में बुवाई करें। उस दिशा में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई प्रकार के कृषि मशीनरी व उपकरण विकसित किए गए जो कि बुवाई का कार्य करते हैं। अभी अपन मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में खासतौर से खरीफ फसलों में सोयाबीन व धान की रोपाई या बुवाई होती है, तो उस दिशा में भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो सीड ड्रिल होते हैं, अभी कई किसान अभी भी सीड ड्रिल यूज करते हैं, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि सीड ड्रिल के साथ सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल भी उपयोग में लाएं। उससे क्या होता है कि खाद और बीज दोनों की एक साथ बुवाई और हो जाती है और उससे आपका समय भी बचता है और आपका बीज भी कम लगता है। दूसरा

0: आजकल ये हो गया है कि नए नए प्लांटर्स भी आ गए हैं, खास तौर से महंगे बीजों की बुवाई करने के लिए, या आपको एक फसल के बीच में दूसरी फसल लगानी है तो आप एक ही मशीन से इंक्लाइन प्लेट प्लांटर को उपयोग करके आप दो फसल एक साथ बो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अलग अलग बॉक्स होते हैं, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग आप सीड डाल दो और उसमें प्लेट लगी होती है, प्लेट में आपकी बीज की साइज़ के हिसाब से आप प्लेट लगा दें और उसके बाद आप इंक्लाइन प्लेट प्लांटर से भी पर्टिकुलर बीज की बुवाई कर सकते हैं। अब जैसे सोयाबीन यहाँ बहुत से होती है, तो सोयाबीन में भी मेरा ये आपसे अनुरोध है कि एक तो इंक्लाइन प्लेट प्लांटर यूज करें। इंक्लाइन प्लेट प्लांटर में भी आजकल रेज बेड प्लांटर भी आने लगे हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश में क्या होता है कि कभी अति वर्षा होती है, कुछ दिन तक बिल्कुल सूखा रहता है, तो आप इंक्लाइन प्लेट प्लांटर या रेज बेड फ्रो प्लांटर यूज करें जिसमें भी इंक्लाइन प्लेट लगी होती है। तो उससे बुवाई करने से ये होगा कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो जो नाली होगी उसके में से पानी निकल जाएगा, और कम बारिश होगी तो जो नाली है उस वो मॉइस्चर कंजर्वेशन के काम आएगा। दूसरा, धान की रोपाई भी मध्य प्रदेश में काफ़ी किसान कर रहे हैं, तो उसमें भी मेरा उनसे अनुरोध है कि आजकल राइड ऑन टाइप और सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर विकसित हो गए हैं और वो कस्टम हायरिंग पर अवेलेबल है, तो किसान भाई उनको कस्टम हायरिंग पर राइस ट्रांसप्लांटर लें। नहीं तो क्या होता है कि अगर मजदूरों से बुवाई रोपाई करेंगे धान की तो मजदूर की एक तो उपलब्धता मुश्किल है, अगर उपलब्ध भी होंगे तो महंगे मिलेंगे, और अगर आप मशीन को कस्टम हायरिंग पर लेकर आप अपने ट्रांसप्लांट राइस की ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो लागत भी कम आएगी। फिर जैसे कि अपन आजकल और भी सोफिस्टिकेटेड नई नई मशीनें भी विकसित की है जिसमें बीज से बीज और प्लांट से प्लांट के बीच में भी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, वो खासतौर से महंगे बीजों जैसे कपास भी मध्य प्रदेश में कुछ किसान बोते हैं तो उसके लिए उपयोग में ला सकते हैं, और उसमें क्या होता है कि बीज भी बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होती है और फिर उसमें आपकी बीज की लागत कम होती है और पैदावार भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी जानकारी के लिए देना चाहूँगा कि आजकल धीमे धीमे सोफिस्टिकेटेड और ऑटोमेटेड सीडर्स भी विकसित हो रहे हैं, लेकिन उनको अभी अडॉप्शन या फील्ड लेवल पर आने में समय लगेगा, लेकिन उस दिशा में भी काम चल रहा है। तो मेरा अंत में किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि बीज की छिड़काव न करें बल्कि बीज की बुवाई कतार में प्लांटर या सीड ड्रिल के उपयोग से करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अष्टषष्टीतमे जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकालपूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, प्रसंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 कोटि रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोशेषु स्थानांतरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण

0: करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 बजे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सबीरा पेश किया जाएगा। 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा अनिल दंडोतिया के गाए बुंदेली लोकगीत।

9:30 बजे कार्यक्रम अनमोल धरा में, इसमें आज आप सुनेंगे मॉनसून कारक और प्रभाव, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से। 10 बजे जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आज आप सुनेंगे राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन, राग होगा मारवा। दिन में 11 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 12 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम और 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहनी का दूसरा भाग।

दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की रहेगी। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। योगदान रहेगा आकाशवाणी रीवा का। 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश किया जाएगा।

युवाओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:02 पर, योगदान रहेगा आकाशवाणी रीवा का। फिल्म संगीत आप सुनिएगा शाम 5:33 पर, 6:15 और 8:35 पर। शाम 6:00 पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा। शाम 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण होगा और शाम 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनिएगा। रात 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष

रात्रि 9:30 बजे कार्यक्रम चित्र भारती प्रस्तुत किया जाएगा। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा विवेक कर्माहे का ठुमरी दादरा गायन। श्रोताओं, कुछ खास कार्यक्रम हम आपको पुनः बता देते हैं। आज 7:21 पर आप सुनिएगा ग्राम सभा कार्यक्रम और 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। रात्रि 9:30 बजे चित्र भारती कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थे आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा बंगाल दौरे पर, रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, बंगाल में किसानों को सम्मान निधि की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत बांटी 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंदौर के सावेर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट, आज भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे और दोनों संथाली जहरा तथा हो जहरा के पावन स्थलों पर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और

0: प्रधानमंत्री रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपए के से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री आज हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर जिले के सावेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। इसके तहत 38,000 से अधिक परिवारों को नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान वे 2,935 करोड़ रुपये की लागत वाली करीब 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं कल केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की। भोपाल में एमपीआईडीसी मुख्यालय में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक सुशील कुमार सतपुते ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान साझा मंच पर आकर नवाचार आधारित रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाएंगे। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुँचने की अपील की गई है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश पुलिस को विदेश मंत्रालय द्वारा 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को

इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 3,35,000 से अधिक पासपोर्ट सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही यहां स्टार्टअप्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होगी। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि वे व्यापार, पर्यटन और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र बन सकें। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में तुलसीनगर पुलिया से निपानिया तक सड़क और सीवर लाइन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शुभारंभ किया। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में आज किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आगरमालवा के ग्राम गाता में 750 बीघा शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सीमांकन किया गया। राजगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नीट परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। और इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में रेशम समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ताज़ा तरीन खबरें, चुनिंदा फिल्मी गीत और विविध जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का एक नया अंक लेकर हाजिर हूँ मैं मेघा तिवारी। दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस विकास यात्रा में एक शब्द लगातार चर्चा का केंद्र है, वो है

स्टार्टअप। स्टार्टअप केवल एक नया व्यवसाय नहीं बल्कि नवाचार, रचनात्मकता और समस्या के समाधान की तरफ एक नई सोच का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्टार्टअप संस्कृति ने उल्लेखनीय प्रोग्रेस की है। तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय सेवाएं और ई कॉमर्स जैसे अनेक क्षेत्रों में युवा उद्यमी नए नए विचारों के साथ आगे आ रहे हैं और न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं बल्कि समाज की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित स्टार्टअप इंडिया पहल ने भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न योजनाएं, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और नवाचार को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों ने युवा को उद्यमिता की ओर आकर्षित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्टार्टअप केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त होकर उभरेगा। इसके लिए आवश्यक है कि युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दिया जाए और नवाचार और कौशल विकास को भी प्रोत्साहित किया जाए। स्टार्टअप केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं है बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो देश के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और सपना को नई दिशा प्रदान कर रहा है। विभिन्न विषयों पर चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा नमस्कार भोपाल में, लेकिन इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं ये मधुर गीत।

तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर।

ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। मेट्रो निर्माण के चलते आनंद नगर स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र और गौतम नगर स्थित शासकीय गीतांजलि कन्या पीजी कॉलेज केंद्र के जाने वाले विशेष मार्गों से जाने की सलाह दी गई है। बता दें कि शहर के 32 परीक्षा केंद्रों में रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय में भी गणित की तर्ज पर 2 विकल्प बेसिक और स्टैंडर्ड लागू करने का निर्णय लिया है। मंडल द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं और सत्र 27-28 से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को क्षमता और आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी विषय का चयन करने का अवसर मिलेगा। माशिम के अनुसार ये निर्णय नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को विकल्प आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय के अध्ययन में अधिक लचीलापन मिलेगा और वे अपनी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार विषय का स्तर चुन सकेंगे। एक ही किताब लेकिन अलग अलग होंगे प्रश्न पत्र। माशिम ने यह भी स्पष्ट किया है कि बेसिक और स्टैंडर्ड अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक ही होगी और दोनों वर्गों की कक्षाएं भी साथ लगेंगी। विद्यार्थियों को केवल नामांकन के समय पसंद का विकल्प चुनना होगा। हालांकि दोनों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। प्रश्न पत्रों का निर्माण माशिम द्वारा जारी सैंपल पेपर और अंक योजना आधार पर किया जाएगा और दोनों का कठिनाई स्तर भी अलग होगा। अगली खबर है हिंदी फिल्म संगीत के महान गायक मुकेश के सदाबहार गीतों को समर्पित एक खास संगीतमय संगीत रिमेम्बरिंग मुकेश का आयोजन रविवार को किया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे से रविंद्र भवन स्थित अंजनी सभागृह में होगा। कार्यक्रम का आयोजन अनुभूति मेलोडिफर एवर ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इस संगीतमय शाम में मुकेश के लोकप्रिय और कालजयी गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। एक और खबर है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और रेलवे इंस्टीट्यूट के सहयोग से यूथ स्पोर्ट्स कराटे डॉक्टर एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा 34वें सेंट्रल इंडिया कराटे प्रतियोगिता का आयोजन 20 और 21 जून को रेलवे इंस्टीट्यूट के बैडमिंटन हॉल में किया जाएगा। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी भाग लेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपक मालवीय होंगे, जबकि ADGP परवेज आलम और DSP दिनेश जोशी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये थी कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार, भोपाल सुन रहे हैं आप, और अब एक और गीत आपकी नज़र, फिल्म परख से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, वक्त मिलाइए। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:27 हो चुके हैं। अब हम आपको समाचार पत्रों की सुर्खियां बताते हैं। पहली खबर है, नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी। ट्रैफिक

0: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और कार्यक्रम है आपका मनपसंद नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा अनेक यादों, अनुभवों और प्रेरक प्रसंगों से समृद्ध रही है। इन्हीं स्मृतियों को संजोती है पुस्तक अनाउंसर्स डायरी। इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हम चर्चा करेंगे इसके महत्व और आकाशवाणी की विरासत पर। हमारे साथ हैं आकाशवाणी भोपाल के वरिष्ठ उद्घोषक और अनाउंसर्स डायरी के प्रधान संपादक श्री पुरुषोत्तम श्रीवास।
1: सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं अनाउंसर्स डायरी के विमोचन के अवसर पर।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी। अनाउंसर्स डायरी एक ऐसी किताब है जिसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के अपने अनुभव शामिल हैं और जो 35-40 साल का अनुभव है उनका, वो इस किताब में शामिल है। और आकाशवाणी ने चूंकि आपको मालूम है कि 8 जून 2026 को 90 साल की स्वर्णिम यात्रा पूरी की है
1: जी।
2: और इस स्वर्णिम यात्रा में आकाशवाणी के जो उद्घोषक है वो बेसिकली आकाशवाणी का चेहरा कहे जाते हैं, आकाशवाणी की आवाज कहे जाते हैं
1: जी।
2: तो ऐसे लोगों के इसमें अनुभव शामिल हैं। 380 पेज की किताब है, हिंदी और इंग्लिश में किताब है। 41 अनाउंसर्स के आलेख हमारे पास हैं, जो 41 अनाउंसर्स है वो हिंदी में भी हैं और 41 अनाउंसर्स के आलेख इंग्लिश में भी हैं। तो 380 पेज की किताब है ये। और दरअसल हमारा ये था कि आकाशवाणी ने हमें मान दिया, सम्मान दिया, पहचान दी, प्रसिद्धि दी, प्रतिष्ठा दी है, तो हम आकाशवाणी को कुछ दे सकें। आकाशवाणी को हम क्या दे सकते हैं आदर के अलावा और एक कृतज्ञता के अलावा? कुछ दे नहीं सकते हैं। तो हम किताब के माध्यम से हम उद्घोषकों का ये था कि आकाशवाणी को थैंक यू बोले। और हमने इंडिया भर के जो उद्घोषक हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार, आंध्रा, पुडुचेरी, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब उद्घोषकों के आलेख इसमें शामिल हैं। और मुझे लगता है कि ये किताब नहीं है बेसिकली, ये एक म्यूजियम है, एक संग्रहालय है। ये आप किताब को पढ़ेंगे तो वो पुराने समय का जो आकाशवाणी था, टेप डेक से लेके फिर आपका सीडी और पेन ड्राइव और सॉफ्टवेयर, ये सब आपको दिखाई देंगे वहाँ किताब में। जब आप किताब पढ़ेंगे तो ये एक म्यूजियम का रूप है, ये कागज पर उकेरा गया म्यूजियम है बेसिकली ये।
1: जी जी जी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमसे ये साझा किया कि क्या क्या इसमें हमें मिल सकता है। सर, ये तो हम सभी जानते हैं और ये अपने आप में एक विशेषता है कि हम आकाशवाणी से जुड़े हैं। बीइंग एन अनाउंसर, आकाशवाणी में होने का आप किस तरह का प्रिविलेज आप महसूस करते हैं, क्योंकि नॉट एवरी वन कैन गेट देयर, और आपका अपना इतना इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है। पर्सनल कोई अगर कोई ऐसा विचार साझा करना चाहे हमारे श्रोताओं के साथ, क्योंकि ये आपने पुस्तक के विमोचन का समय भी कुछ ऐसे टाइम पर चुना जब 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा भी संपन्न हुई है।
2: मेघा जी, आकाशवाणी में नौकरी करने तो नहीं आया था, काम करने आया था। नौकरी करने में और काम करने में थोड़ा सा फर्क होता है। नौकरी तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आकाशवाणी ने मुझे मौका दिया, अवसर दिया काम करने का। जब आपकी रुचि का काम मिलता है ना, तो आपको काम करने में कभी थकान महसूस नहीं होती है, आपको काम हमेशा अच्छा लगता है। और इसमें कभी थकान महसूस मुझे हुई नहीं, लगभग 30 साल से ऊपर की सर्विस हो गई है और अभी भी मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। और आकाशवाणी में रह के मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, जिसमें एक खास कार्यक्रम का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो होता था विविध भारती आपके बीच। एक बार हम लोग सेंट्रल जेल भोपाल में गए थे और उसका उल्लेख भी मैंने किताब में किया है। सेंट्रल जेल में जाके जब कैदियों से बात की तो एक कैदी से मेरी बात होती है और

0: मैंने उससे पूछा कि आप जेल में क्यों आए हैं, तो उसने बोला कि मैं सिर्फ 10-15 सेकंड के आवेश में आकर क्रोधित होकर मैंने एक आदमी की हत्या कर दी थी और हत्या करने के कारण मैं जेल में हूँ। और उस कैदी का ही संदेश था आकाशवाणी के माध्यम से कि मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने क्रोध पर काबू रखें। अगर आप क्रोध पर काबू रखते हैं तो जैसे मैं सफर कर रहा हूँ जेल में और मेरा परिवार बाहर सफर कर रहा है, उससे आप बच सकते हैं। उस कैदी का जो संदेश था, मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती कि हमने आकाशवाणी के माध्यम से कई लाखों लोगों तक ये संदेश दिया कि क्रोध पर काबू रखें।
1: जी जी जी जी, ये तो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेज दिया आपने। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अनाउंसर्स डायरी है, इसको बनाते समय अगर कुछ चैलेंजेस आए और आप वो भी हमें बताना चाहें तो क्या रहे होंगे वो चैलेंजेस?
0: जी मेघा जी, जब भी कोई काम करते हैं ना तो चुनौतियां तो उसमें आती हैं और खासकर ऐसे काम जो इसके पहले कभी हुए नहीं है। अब उन चुनौतियों का जिक्र अगर करूँगा तो उसके लिए समय थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब हमने देश भर के उद्घोषकों को जोड़ा है तो शुरुआत में थोड़ा सा मुझे भी लगा और लोगों को भी लगा कि काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, क्या है, लेकिन पौधा पनपा और आज वो वृक्ष के रूप में अनाउंसमेंट डाली के रूप में आपके सामने आ गया है।
1: हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसका विमोचन किस तरह हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और हमारे श्रोता अगर इसे हासिल करना चाहें तो किन सोर्सेज से और कहाँ कैसे इसको पढ़ने का अवसर मिल सकता है?
0: जी मेघा जी, आज शाम को 5 बजे इस किताब का विमोचन होगा मानव संग्रहालय के सभागार में
1: जी।
0: और जो इसके मुख्य अतिथि होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अमिता पांडे हैं, जो कि निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आकाशवाणी विविध भारती मुंबई के वरिष्ठ उद्घोषक रहे जी श्याम जी। और इस किताब की जो समीक्षा करेंगे राजेश बादल जी, जो कि एक बड़ा नाम है, पत्रकार है, बहुत बड़े राज्यसभा टीवी के निदेशक रहे हैं, और डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी समीक्षा करेंगे किताब की, जो कि एक लेखक है, चिंतक और आईएएस ऑफिसर रहे हैं। और इस किताब को अगर पाठक हासिल करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर ये किताब उपलब्ध है, वहां से हासिल कर सकते हैं। और वहां जो हमारा कल विमोचन होगा आज या शाम को 5 बजे मानव संग्रहालय में, तो वहां भी हमारे एक छोटा सा काउंटर होगा, वहां से भी हासिल कर सकते हैं।
1: जी जी जी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सर, और इस उपलब्धि के लिए, और ऐतिहासिक बातों को कंपाइल करके और इस तरह से फिर से रिकॉर्ड पे लाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने कीमती वक्त निकाला और नमस्कार भोपाल में शामिल होकर ये सारे विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: ये थे आकाशवाणी भोपाल के वरिष्ठ उद्घोषक और अनाउंसर्स डायरी के प्रधान संपादक श्री पुरुषोत्तम श्रीवास। शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये प्यारा सा गीत, अब सुनिए फिल्म खूबसूरत से।

टचम टचम टक टक जाते सिखा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: न्यूज़ ऑन AIR और DTH के ऑडियो चैनल्स के माध्यम से आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और कार्यक्रम है नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, योग संज्ञात्मक स्वास्थ्य और स्मरण शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और लाभकारी हर तरह से माना जाता है। वर्तमान जीवन शैली में कॉग्निटिव हेल्थ यानी संज्ञानात्मक स्वास्थ्य और महत्व लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा भाग दौड़ और इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतने सारे सभी के पास प्रायोरिटी के काम रहते हैं कि मानसिक संतुलन और एकाग्रता बनाए रखना और मानसिक क्षमता को सुदृढ़ करना जानना बहुत रोचक होता है। इस विषय पर चर्चा के लिए कार्यक्रम में हम अब स्वागत करेंगे योग एवं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी का। आइए जानते हैं कि कॉग्निटिव हेल्थ और मेमोरी रिटेंशन के लिए किस तरह से योग सहायक हो सकता है।
1: धन्यवाद मेघा जी। सबसे पहली चीज़ तो हम कॉग्निटिव हेल्थ को जानेंगे, संज्ञानात्मक ज्ञान बोलते हैं इसको हम यदि कहें तो। ये मानसिक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अनुभव और समझ आती है। इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं जैसे थिंकिंग, जानना, नोइंग, आपका थिंकिंग सोचना, नोइंग जानना, डिसिप्लिन और आपकी स्मृति मतलब मेमोरी, और आपका लास्ट में जो आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो जो हमारी जानना और सोचना है, समझ जो हमारी है और विचार है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा डिसिप्लिन, लाइफ के अंदर डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, ये हमारे अंदर से प्रेरित करता है हमें। फिर हम स्मृति, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, उसका भी बहुत इफ़ेक्ट है हमारी कॉग्निटिव हेल्थ पर। और जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, जिसको हम ये कहते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता, योग में इस चीज़ को हम हमेशा कहते हैं कि ये आत्मविश्वास की तरफ लेकर जाता है और सही और गलत को जहाँ पर उसको समझना चाहिए वो आपको बराबर, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कि मैं निर्णय ले सकता हूँ, ये क्षमता मेरे अंदर है। तो ये हमारी कॉग्निटिव हेल्थ है जिसको हम योग के माध्यम से कैसे अच्छा रख सकते हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले योग जो बेस्ड है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि AAA मतलब कि एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और अलर्टनेस, स्वीकारता, जागरूकता और सजगता, इस पर हमारा मेंटल हेल्थ बहुत डिपेंड करता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिस्थितियों को हम जैसे ही स्वीकार लेते हैं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम उससे फाइट कर सकते हैं, और वो आपको योग करने से मिलता है। जागरूकता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, चाहे अपनी कर्तव्यों से या अपने अधिकारों से जागरूक होना ही चाहिए, और यदि वो है तो डेफिनेटली उसके उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, और ये योग से आपको मिलती है। तीसरी जो आती है हमारी सजगता। योग हमेशा एक ही बात कहता है, सजग रहिए, अलर्ट रहिए। चाहे आप अपने योग कर रहे हैं तब, या आप अपने जीवन के कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें यदि आप सजगता से करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। फिर कुछ आसन हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो स्पेशली हमारे कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये एक पैकेज की तरह करना है, जैसे कि जो लोग बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं, कि विपरीत करणी आसन, सर्वांग आसन, हलासन, ये तीन आसन को कॉम्बो में करते हैं एक के बाद एक। आप डिपेंड करता है कि इसमें आप कितना सस्टेन कर सकते हैं। मान लीजिए 30 सेकंड भी आप सस्टेन कर रहे हैं तो आपका 90 सेकंड का ये आसन हुआ, लगभग 1.5 मिनट का। तो इस आसन को जब आप करते हैं तो इसका एक काउंटर पोज होता है मत्स्य आसन, ये जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया है आपकी इस हेल्थ के लिए। मेमोरी पावर भी बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट देता है, हमारी विजन को इम्प्रूव करता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। फिर इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आसन में, जैसे पश्चिमोत्तानासन हुआ, योग मुद्रा है, उष्ट्रासन है, ये सब आसन आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फिर प्राणायाम के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम काम एंड कूल प्राणायाम भी कहा जाता है, और ये प्राणायाम की शुरुआत है, तो ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी

0: बहुत हेल्दी बनाए रखता है। दूसरा प्राणायाम जो हम बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, तो भस्त्रिका जो प्राणायाम होता है ये आपकी लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, ब्रेन सेल्स को भी हेल्दी बनाए रखता है और एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। फिर तीसरा जो प्राणायाम हम बोलते हैं भ्रामरी नाद, भ्रामरी नाद जो गुंजन आप भ्रमर ये गुंजन जो होता है ना ये हमारे पूरे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तंत्रिका तंत्र जिसको नर्वस सिस्टम वो हम बोलते हैं वो उसमें उसको हेल्दी बनाए रखता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम जितना अच्छा प्राणायाम करते हैं तो वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बढ़ाता है। इसी तरह से ध्यान है, और कुछ अभी आपने नाम सुना होगा कि सुपर पावर योग या सुपर ब्रेन के लिए जो योग होता है जिसको हमारे योग में गणेश क्रिया बोलते हैं, जो स्क्वैट होता है, जो एक समय में हमको पनिशमेंट मिलती थी क्रॉस हैंड करके आप उकड़ू करके बैठा के मुर्गा बनाया जाता था, वही सुपर ब्रेन योग होता है। उसको यदि आप करेंगे तो वो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा, बॉडी को बैलेंस रखेगा। बैलेंसिंग पॉस्चर करिए, ये भी आपके मेंटल हेल्थ के कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ना केवल युवाओं को बल्कि एजिंग वालों को भी जिनको प्रॉब्लम होता है उनको बैलेंस बनाने के लिए भी आप बैलेंसिंग वाले आसन कर सकते हैं। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही मेरा संदेश है।
1: जी जी बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी शुभकामनाएं। नमस्कार, भोपाल में अभी हमारे साथ थी योग एवं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी, जो हमें जानकारी दे रही थी कि कैसे योग से एकाग्रता और स्मरण शक्ति को रिटेन किया जा सकता है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, और अब वक्त हो चला है एक और विशेष बातचीत का। श्रोताओं, माइक्रोप्लास्टिक आजकल पर्यावरण में न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे आसपास जो अलग अलग जानवर हैं उनके लिए भी एक गंभीर चुनौती बन के उभर रहा है। ये सूक्ष्म प्लास्टिक कण हमारे जल, वायु और खाद्य श्रृंखला तक पहुँच चुके हैं। इस अदृश्य प्रदूषण के प्रभाव को समझना इस वक्त की आवश्यकता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पर्यावरण शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मेहता। आइए जानते हैं उनसे इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में।
1: धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: जी,
1: सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए माइक्रोप्लास्टिक्स किसे कहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम हो।

0: बहुत से पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये बड़े प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के टूटने से और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान बनते हैं। आपने पूछा इन्हें अदृश्य खतरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। पानी में, मिट्टी में, हवा में, भोजन में और जीव जंतुओं के शरीर में भी।
1: इसको सबसे पहले किस तरह आइडेंटिफाई किया गया था और मौजूदा समय में कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस खतरे को हमारे आसपास, क्योंकि हम भोपाल से विशेष रूप से बात कर रहे हैं, तो कैसे ये हमारी भी लाइफ का हिस्सा बन चुका है?
0: ये 1950 के बाद प्लास्टिक का प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ा। प्लास्टिक सस्ता, मजबूत और उपयोगी था, इसलिए इस्तेमाल इसका हर जगह होने लगा। 1970 के दौरान वैज्ञानिकों ने समुद्रों में प्लास्टिक के छोटे कणों को पहचाना, लेकिन 2004 के बाद माइक्रो प्लास्टिक शब्द और इस समस्या पर रिसर्च को विशेष पहचान मिली। और आज बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे ये जनरेट हो रहा है। इवन अगर आप अपने कपड़े भी धोते हैं वॉशिंग मशीन में, इवन टायर के घिसने से भी माइक्रोप्लास्टिक जनरेट होते हैं। और आज ये समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि इसके जो छोटे छोटे कण हैं ये मनुष्यों के शरीर के अंदर तक पहुंच चुके हैं। माउंट एवरेस्ट की बर्फीली पहाड़ियों पे देखिए, आर्कटिक और एंटार्कटिक या पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा गार्बेज पैच है, हर जगह इसके कण अब पहुँच चुके हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है, पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए भोपाल का जो हमारा ये वेटलैंड है जिसको हम बड़ा तालाब कहते हैं, अगर हम इस पे भी रिसर्च अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक भी माइक्रोप्लास्टिक के कण देखने को मिलेंगे। लोगों में अवेयरनेस ले जाने की ज़रूरत है ताकि वो प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें। जैसे मैंने बताया, जब बड़े प्लास्टिक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक्स टूटते हैं तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स को जनरेट करते हैं, और
1: जी
0: ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि हमें दिखते नहीं हैं, तभी हम इनको इनविजिबल डेंजर कहते हैं।
1: जी तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि क्या सॉल्यूशंस हमारे हाथ में हैं, क्योंकि हमारे श्रोता अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, गृहिणियाँ हैं, और हमारे ग्रामीण अंचलों में भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या चॉइसेस और प्रेफरेंसेस उनके हो सकते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक जो बन रहा है इस पर रोक लग सके?
0: बिल्कुल, हम इस समस्या को कम कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटे कदम लेकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जैसे क्लोथ बैग का उपयोग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, स्टील या ग्लास कंटेनर्स का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना गर्म ना करें, नेचुरल फाइबर वाले कपड़े चुनें और वेस्ट को अलग-अलग करके रिसाइकिल करें। ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठा के हम माइक्रोप्लास्टिक के खतरे से बच सकते हैं।
1: जी। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, एक सम अप मैसेज, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये DTH के माध्यम से पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप?
0: अगर मैं लिसनर्स को एक मैसेज देना चाहूँ, माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत छोटे जरूर हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। प्लास्टिक का जिम्मेदारी से उपयोग, रीयूज, रिसाइकलिंग और पब्लिक अवेयरनेस ही इसका सबसे प्रभावी समाधान है। याद रखिए, स्मॉल चॉइसेस टुडे कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस टुमारो।
1: आपने कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर, एंड इट वॉज रियली इनलाइटनिंग।
0: एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर कॉलिंग मी टू योर स्टूडियो एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द लिसनर्स।
1: अभी आपने हमारी ये बातचीत सुनी माइक्रोप्लास्टिक एक अदृश्य खतरा विषय पर। हमारे साथ थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान NCERT भोपाल के पर्यावरण शिक्षा विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर पंकज मेहता से। अब सुनिए ये गीत।

और इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल सुबह 7:20 पर ज़रूर सुनिए कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी भोपाल है। समाचार प्रभात आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी

0: समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी,

0: खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय

0: प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashwani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरमई सबेरा। श्रोताओं, हम रोज रेडियो पर ना जाने कितने गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन गानों पर हम झूमते हैं उनके पीछे एक पूरी कहानी होती है। कभी कोई गाना बाथरूम में रिकॉर्ड होता है तो कभी किसी गाने के लिए 100-100 अंतरे भी रिजेक्ट होते हैं। आज के इस सफ़र में मैं आपको सुनाऊंगी कुछ ऐसे ही एवरग्रीन नगमे और खोलूंगी उनकी डायरी, उनके पीछे छिपे दिलचस्प रोचक तथ्य, रोचक पन्ने। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम।

श्रोताओं, अब मैं जो आपको गीत सुनाने जा रही हूँ, इस गाने में जो शुरुआती म्यूज़िक है जहाँ किशोर कुमार गैराज के औजारों से आवाज़ें निकालते हैं, वो कोई पहले से तय की स्क्रिप्ट नहीं थी। रिकॉर्डिंग के दिन किशोर कुमार स्टूडियो में बेहद चुलबुले मूड में थे। उन्होंने टेबल, चाबियाँ और गैराज के बर्तनों जैसी दिखने वाली चीज़ों को थपथपाना शुरू कर दिया। संगीतकार SD बर्मन को यह पागलपन इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे गाने की ओरिजिनल ट्रैक में शामिल कर लिया। गाना रिकॉर्ड करते समय किशोरदा ने कई जगह अपनी मर्जी से अजीबोगरीब आवाज़ें निकाली, जिसने इस गाने को अमर बना दिया।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: श्रोताओं चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। और अब मैं आपको बता देती हूँ फिल्म का नाम। फिल्म है मुगल ए आज़म, गायिका है लता मंगेशकर, और अब सुनाती हूँ इस गाने के पीछे की कहानी। श्रोताओं इस एक गाने को फाइनल करने के लिए संगीत नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी के बीच रात भर में 105 गाने रिजेक्ट हुए थे। सुबह के वक्त जब शकील साहब ने तंग आकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन बनाई, एक लोक धुन की लाइन गुनगुनाई, वो थी प्रेम किया क्या चोरी की। नौशाद साहब को ये आइडिया क्लिक कर गया और उन्होंने इसे प्यार किया तो डरना क्या में बदल दिया। श्रोताओं उस जमाने में आज की तरह कंप्यूटर या साउंड मिक्सर नहीं होते।

थे। गाने में अनारकली की आवाज़ में जो गूंज सुनाई देती है उसे रिकॉर्ड करने के लिए आप जानते हैं क्या किया गया? उसे रिकॉर्ड करने के लिए लता मंगेशकर जी को स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाने के लिए कहा गया ताकि वो नेचुरल गूंज रिकॉर्ड हो जाए, और फिर ये गाना रिकॉर्ड हो गया।

श्रोताओं, अब मैं जो आपको गीत सुनाने जा रही हूँ उसके पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, स्वर है लता मंगेशकर की। श्रोताओं, ये गीत अपनी खूबसूरत और शांत धुन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक विदेशी कनेक्शन है। शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन एक बार मुंबई के एक क्लब में बैठे थे। वहाँ उन्होंने एक मरीन बैंड को एक अंग्रेज़ी गाना इंटरनेशनल बजाते हुए सुना। वो धुन जयकिशन के दिमाग में ऐसी बैठी कि उन्होंने रात

को ही आकर उसकी तर्ज पर एक भारतीय धुन तैयार कर दी। जब शैलेंद्र साहब ने इस पर बोल लिखे और लता जी ने इसे अपनी मखमली आवाज़ दी, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बेहद देसी और जज्बाती गाने की प्रेरणा एक वेस्टर्न क्लब से आई थी। वो गीत है इस तरह।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म धड़कन से। इस गाने की शुरुआत में जो सुनील शेट्टी की भारी भरकम आवाज़ में मशहूर डायलॉग है, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। श्रोताओं को ये जानकर बहुत मज़ा आएगा कि जब इस गाने का ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड और रिलीज किया गया तब फिल्म की शूटिंग पूरी भी नहीं हुई थी। संगीतकार नदीम श्रवण ने जब ये धुन बनाई तो निर्देशक धर्मेश दर्शन को लगा कि इस गाने में एक अजीब सा ठहराव और जुनून है। उन्होंने सुनील शेट्टी को फिल्म साइन करने से पहले ही स्टूडियो बुलाया और गाने के शुरुआत में ही ये डायलॉग रिकॉर्ड करवा लिया। यानी गाना बाद में हिट हुआ और डायलॉग की वजह से उसकी हाइप पहले ही रेडियो और कैसेट पर बन चुकी थी। ये गीत है ये

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। इस गीत का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। ये गाना हिंदी सिनेमा का पहला ऐसा गीत था जिसने पूरा का पूरा स्लो मोशन में शूट किया गया था, लेकिन इसके पीछे की म्यूज़िक रिकॉर्डिंग की कहानी और भी दिलचस्प है। संगीतकार जतिन ललित ने जब इस गाने में पियानो की वो मशहूर धुन जोड़ी, जो उस जमाने के कई बड़े जानकारों ने कहा कि ये धुन बहुत वेस्टर्न लगती है और भारतीय श्रोता इसे पसंद नहीं करेंगे, मगर जतिन ललित अड़े रहे। उदित नारायण ने जब इसे गाया तो उन्होंने अपनी आवाज़ में जो मासूमियत और सांसें छोड़ी, उससे इस गाने को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा यूथ एंथम बना दिया। आज भी इस गाने के पियानो नोट्स बजते ही लोग पहचान जाते हैं।

0: लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन के लिए प्रदेश पुलिस को 5,00,000 से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया गया। राज्य शासन ने 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकास खंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे जिनमें विद्यालयों महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। एमपीआईडीसी मुख्यालय भोपाल में कल रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। और भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं, एक बहुत ही मज़ेदार आपको किस्सा सुनाती हूँ इस गीत के पीछे का। ये फिल्म है दिल से। इस गीत को फिल्माने के लिए चलती ट्रेन की छत पर फिल्माया गया। ये गीत आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। संगीतकार A.R. रहमान ने इस गाने की धुन सूफी संत बुल्ले शाह की एक कलाम तेरे इश्क नचाया से प्रेरित होकर बनाई थी। सुखबिंदर सिंह ने जब इस गाने की रिकॉर्डिंग की तो रहमान साहब उनकी हाई पिच आवाज़ सुनकर दंग रह गए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इसकी शूटिंग में आया। ट्रेन की छत पर शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा के साथ दर्जनों डांसर्स नाच रहे थे। सुरक्षा के लिए डांसर को ट्रेन से रस्सी से बांधा गया था, लेकिन शाहरुख खान ने रस्सी बांधने से मना कर दिया था। वो बिना किसी

से सुरक्षा के चलती ट्रेन पर जंप कर रहे थे। गनीमत रही कि चार दिनों की इस खतरनाक शूटिंग में किसी को खरोंच तक नहीं आई और हमें मिला बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक वीडियो।

सर, श्रोताओं, कार्यक्रम में अंतिम और रोचक किस्सा। इस गाने की शुरुआत में जो मैंडोलिन बजता है, एक तरह का तार वाला वाद्य यंत्र होता है ये, इसकी धुन बजती है, उसने इस गाने को अमर कर दिया। श्रोताओं, आपने गैस कर लिया होगा कि मैं कौन से गीत की बात कर रही हूँ। ये धुन किसी प्रोफेशनल म्यूजिशियन ने नहीं, बल्कि संगीतकार जतिन ललित ने खुद स्टूडियो में बैठे बैठे मजाक में गिटार और मैंडोलिन मिक्स करके बनाई थी। जब आनंद बख्शी साहब ने पहली बार ये धुन सुनी तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, तुमने धुन तो इतनी कमाल बना दी है, अब मुझे शब्दों के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिर उन्होंने सरसों के खेत को ध्यान में रख कर तुझे देखा तो ये जाना सनम लिखा। मज़ेदार बात यह है कि इस गाने की शूटिंग के दौरान पंजाब में इतनी ठंड थी कि कुमार सानू और लता जी जब स्टूडियो में गा रहे थे तो वो लगातार गर्म चाय पी रहे थे ताकि गले की हरकत कम ना हो और आवाज़ में वो गर्माहट आ सके जो स्क्रीन पर सरसों के पीले खेतों में दिखनी थी। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सबीरा। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं अनिल दंडोतिया के गाए बुंदेली लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत, जिसे गाया है अनिल दंडोतिया ने।

गीत का कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुना अनिल दंडोतिया के गाए बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।

ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनमोल धरा। इसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता, मॉनसून, कारक और प्रभाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पंकज कुमार।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम अनमोल धरा में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज नागर और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय, मानसून कारक और प्रभाव। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं है बल्कि एक जीवन रेखा है। हर साल करोड़ों लोग इसकी आहट का इंतज़ार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मानसून आता कैसे है, किन कारणों से यह तेज होता है या कमज़ोर पड़ता है, साथ ही इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी आईसर भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आखिर ये मानसून क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई?
1: मानसून वर्ड जो है ये रिसेंट में अरेबिक वर्ड मौसम से बना हुआ है और ये जो पुराने ज़माने में जो ट्रेडिंग होती थी, जो सेलर्स होते थे, जो शिप्स में चलते थे, ये इस मौसम का इंतज़ार करते थे ताकि इसमें विंड के साथ वो अपनी बोट्स को सेल कर सकें। तो ये उस टाइम पे ये बना। फिर उसके बाद पोर्तुगीज़ वगैरह आए, उन्होंने फिर इसको मॉस्कॉन करके एक वर्ड है वो यूज़ किया और फिर इंग्लिश डिक्शनरी में ये मानसून वर्ड से आ गया, ये लगभग 16वीं शताब्दी में।
0: जी, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में ये कितने प्रकार का होता है और ये भारत में कब और कैसे आता है?
1: भारत के सापेक्ष में भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसा आपने बोला, ये मानसून जो है ये सीजनल सिस्टम है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है और लार्जली ये होता है जब हम समर सीज़न में होते हैं। समर सीज़न में क्या होता है कि लैंड जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है और ओशन जो होता है वो उसके सापेक्ष में कम गर्म होता है। तो जब लैंड ज़्यादा गर्म होता है तो ये हवाएं जो हैं वे पूरी नॉर्थ ईस्ट नॉर्मली रहती हैं, उससे साउथ वेस्ट हो जाती हैं। तो लैंड से कंट्रास्ट की वजह से मानसून इनिशियली आता है, उसके बाद फिर दूसरे और कारक हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से मानसून आता है। और दूसरा एक मानसून हमारा विंटर मानसून होता है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, जो कि अक्टूबर से दिसंबर आता है और ये मानसून जून टू सेप्टेम्बर रहता है।
0: जी, मानसून के बनने में कौन कौन से प्रमुख भौगोलिक और जलवायु कारक योगदान देते हैं?
1: हाँ, ऐसा जैसा मैंने शुरू ही कर दिया था इसके बारे में कि मानसून बेसिकली आपका लैंड सी कंट्रास्ट से आता है। समर सीज़न में लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसकी हीट कैपेसिटी ओशन की ज़्यादा होती है, लैंड की कम होती है, तो जो सारी हवाएं हैं ग्रेडियंट जो हो जाता है वो ठंडे गर्म की तरफ हो जाता है, ठंडे से गर्म, ताकि हवाएं जो हैं मिक्स हो सकें। और ओशन भी गर्म हो जाता है समर में तो वाष्पीकरण काफ़ी होता है और लैंड की तरफ जब वो हवाएं चलती हैं तो जब लैंड पे आएंगी तो वो जब अपने माउंटेन

0: जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स है, या हमारे दूसरी ब्रांच है एक हिमालय की तरफ से, वो ब्रांच है, वहाँ जब आती हैं तो वो प्रेसिपिटेट करती हैं।
1: जी, मानसून के आगमन के पीछे कौन कौन सी हवाएं जिम्मेदार होती हैं?
0: हवाएं जैसा मैंने कहा कि साउथ वेस्ट मानसून है ये, तो साउथ वेस्ट अर्ली विंड इनको हम बोलते हैं, और विंटर मानसून के लिए नॉर्थ से विंड आती है तो उनको नॉर्थ ईस्ट अर्ली कहते हैं। एक पॉइंट जो आपने और पूछा कि क्या क्या मानसून का मेन कारण है, एक तो ऑब्वियसली लैंड से कंट्रास्ट है, और दूसरा एक लैटेंट हीट वर्ड करके वर्ड होता है जिसमें हम लोग हिंदी में अगर बोलना चाहें तो गुप्त ऊष्मा बोल सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हीट रिलीज होती है और मानसून रहता है। क्योंकि मानसून मैंने बोला लैंड सी कंट्रास्ट है, तो फिर जब पानी बरस गया तो लैंड सी कंट्रास्ट ख़त्म हो जाना चाहिए
1: जी।
0: तो वो कंट्रास्ट को मेंटेन करने के लिए, चार महीने तक मेंटेन करने के लिए दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट कारक हैं, उनमें एक लैटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा है जो रिलीज होने थे वो सिस्टम को गर्म रखती है और वो ग्रेडियंट बना रहता है
1: जी। क्या ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मानसून पर प्रभाव पड़ता है?
0: हाँ बिल्कुल पड़ता है। मानसून एक ऑब्वियसली एक नेचुरल प्रोसेस है, और उसकी वजह से ही ये रीजन जिसमें हम लोग रहते हैं, स्पेशली इंडिया, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भी हम इसको बोलें, ये पूरा रीजन मानसून की वजह से ही यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ वाटर इस रीजन में मानसून है। 8 से 10 महीने हमारा सिस्टम ड्राई रहता है, यही 2 महीने 3 महीने पानी बरसते हैं, जिसकी वजह से हमारे चाहे वाटर टेबल रिचार्ज करना हो, चाहे हमारे जलाशय भरना हो, इन्हीं से हम 9-10 महीने का जो पानी का संचरण करते हैं और उनसे पूरे साल का निष्पादन करते हैं। तो ये हमारे लिए जिसको कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर है इस देश के लिए
1: जी। पश्चिमी घाट और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं मानसून की दिशा को कैसे नियंत्रित करती हैं? अगर ये नहीं होते तो भारत में मानसून कैसे होता?
0: एक्चुअली हिमालय जो है पर्वत श्रृंखलाओं के श्रेणी में नया हिमालय है, मतलब कि रीसेंट है। नया का मतलब कि 50 से 60 मिलियन ईयर्स एगो, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में रिलेटिव में हम बात कर रहे हैं। और उस समय जब नहीं था तो मानसून बहुत वीक होता था या करंट्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी। फिर जब हिमालय आया तो फिर हमारे एक ITCZ करके फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि क्लाउड बैंड्स का शिफ्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इन समर में होता है, गर्मी की वजह से, हीट ज़्यादा होने की वजह से ऑर्गेनाइज क्लाउड बैंड्स हैं जो आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं और जिनकी वजह से ये सिस्टम पे पानी आता है। अब ये और दूसरा एक होता है ओरोग्राफिक, जब आप गर्म हवाएं आएंगी, मॉइस्चर रहेगा, जब पहाड़ से टकराएंगी तो वो ऊपर जाएंगी तो ऊपर जाके कंडेंस होंगी मीन्स क्लाउड फॉर्मेशन होगा। हाँ। और फिर वो प्रेसिपिटेट होंगी। अगर क्लाउड नहीं होगा, माउंटेन नहीं होगा, तो वो वाला प्रोसेस नहीं होगा और वो हवाएं आगे चली जाएंगी और सिस्टम वीक हो जाएगा, उस तरह का पानी नहीं गिरेगा जैसा गिरता है हमारे यहाँ।
1: जैसे अगर ये नहीं होते तो मानसूनी हवाएं आगे बढ़ जाती और भारत में वो मौसम नहीं होता जैसा आज हम देख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: भारत की कृषि किस हद तक मानसून पर निर्भर करती है?
0: मानसून की बात करें तो अगर शुरू करें, जब हम देश आज़ाद हुआ था तब उस समय तो कृषि पूरा ही मानसून पे डिपेंडेंट थी
1: जी,
0: लगभग 60 से 70% में 80% भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास इरिगेशन पैटर्न या दूसरे बड़े बड़े डैम वगैरह नहीं हुआ करते थे। उसके बाद धीमे धीमे हमारा जो कैनाल्स या बेटर इरिगेशन सिस्टम से, तो कृषि मानसून रेनफॉल पे तो उसकी डिपेंडेंसी कम हो गई, लेकिन अभी भी हमारी लगभग 20 से 40% डिपेंडेंसी जो है वो मानसून रेनफॉल पर है।
1: मानसून अगर समय पर ना आए या बहुत कम बारिश हो तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं?
0: ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और हम लोगों के संदर्भ में, इंडिया के सापेक्ष में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने इनिशियली ही बोला कि ये एक ही मेन स्रोत है पानी का। अगर ये नहीं आएगा तो सबसे पहले तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित होगा। हम एक कृषि प्रधान देश हैं और अभी भी हमारे GDP में कृषि का लगभग 15 से 20%, 18% योगदान एग्रीकल्चर का है
1: जी।
0: और वो योगदान अगर ये मानसून नहीं आता है, और इसके अलावा कृषि योगदान GDP में है लेकिन हमारी आबादी 50% करीब अभी जो है, हमारे फार्मर्स जो हैं अभी भी मानसून रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर ये मानसून नहीं आता तो ऑब्वियसली हमारा जो एग्रीकल्चर है वो प्रभावित होगा। दूसरा, अगर ये प्रोलॉन्ग्ड होता है तो हमारा ड्राउट टाइप की कंडीशन होगी, हमारे ड्रिंकिंग वाटर का इशू होगा। तीसरा, हमारे हाइड्रो पावर पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बिजली उत्पादन में फ़र्क होगा, क्योंकि पानी का संचरण नहीं होगा। तो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट है। और अगर ये 1-2 साल जिसको हम मानसून ना आना, मतलब ड्राउट ईयर जिसको बोलते हैं, अगर लगातार 2 साल ड्राउट ईयर आ जाए तो एक ही साल में तो लगभग 1 से 2% GDP पे असर पड़ जाता है, और 2 साल लगातार हो गया तो बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा हमारे GDP पे।
1: क्या अत्यधिक बारिश

0: सो बाढ़ की घटनाएं भी मानसून की देन होती हैं?
1: देखिए, मानसून का फीचर ही है कि मानसून यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं देता देश में, बहुत हेट्रोजीनियस है। तो कहीं पे जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स पे बहुत पानी है, जहाँ हम लोग हैं भोपाल मध्य प्रदेश, मैं कहूँगा कि लकी है कि यहाँ पे बहुत अच्छा मानसून आता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पानी, जैसे अपना वेस्टर्न इंडिया है या गुजरात है, राजस्थान है, इवन अब पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, जैसे आपका ये ईस्टर्न यूपी बिहार, यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी कम हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में आजकल मानसून कम आ रहा है। तो इस बड़ा हेट्रोजीनियस है मानसून। अब ये हेट्रोजीनियस होने की वजह से एक तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, और मानसून पल्सेस में आता है, कभी आएगा एक एक्टिव फेज आएगा, फिर वो ख़त्म होगा, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर एक्टिव फेज आएगा, क्योंकि सारी मानसून ओशन से आता है, तो सारी हवाएँ आएंगी, एक बार आई वो फिर प्रेसिपिटेट हो गई, फिर उसके बाद दूसरा स्पेल आएगा। तो मानसून में नेचुरली बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्या कहते हैं आप बोल, और क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वातावरण में इवापोरेशन जो का या मॉइस्चर की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा। और उस मात्रा को बढ़ने की वजह से हमें मानसून टाइम में कुछ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, जो पहले जिसको क्लाउड बस वगैरह टाइप के फेनोमेना जो हम लोग पहाड़ों पे सुना करते थे, उस तरह के सिस्टम अब हमारे शहरों में भी आने लगे हैं, जैसे बंबई है,
0: मैदानी
1: इलाकों में आने लगे, ये सही वर्ड शब्द है, या बेंगलोर है, पुणे है, और भी कई बड़े शहर हैं, वहाँ आने लगी, क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिस्टम में बढ़ गई है, और जब वो कंडीशन कंड्यूसिव होती है तो वो एक साथ बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सारा रेनफॉल आ जाता है, और जो कि हम जिसको क्लाउड बस कहते हैं, क्लाउड बस एक टेक्निकल फेनोमेना है जिसमें हम बोलते हैं 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर बारिश एक घंटे के अंदर आ जाना,
0: उसको मतलब हम कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाना,
1: ज़्यादा बारिश,
0: सामान्य शब्दों में कहें तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सर, जैसा आपने कहा कि समुद्र से मानसून आता है
1: जी,
0: तो क्या अलिनो लानिनो का भी इस पर प्रभाव पड़ता है?
1: हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्लाइमेट क्या है कि एक लार्ज स्केल सिस्टम है, ये जो है ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न्स उसको कंट्रोल करते हैं, इवन क्लाइमेट किसी भी एरिया का हो चाहे वो, वहाँ पे ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न कंट्रोल करते हैं। उन ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ क्लाइमेट मोड्स होते हैं, जो बड़े बड़े मोड्स होते हैं, जिनको हम लोग आपने नाम लिया, जैसे एलिनो सदर्न ऑक्सीलेशन एनसो, या जिसका पार्ट होता है एलिनो और लालिना, फिर इंडियन ओशन डाइपोल मोड, और भी बहुत सारे बड़े मोड्स होते हैं जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। मानसून के संदर्भ में एनसो बहुत पॉजिटिवली कंट्रोल करता है, पॉजिटिवली इन द सेंस उसका लगभग वन टू वन रिलेशनशिप है। अगर एलिनो आया तो हमारा मानसून वीक होगा
0: जी,
1: अगर लालिना आया तो हमारा मानसून स्ट्रांग होगा, ये एक सरल भाषा में इसको बोल सकते हैं
0: जी। इसके अलावा मानसून का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: मानसून का हमारे देश पे, जैसा मैंने शुरुआती इसी से किया कि मानसून इज़ ब्रेड एंड बटर हमारे देश का, ऑफ आवर कंट्री, और अगर ये नहीं आता है तो हमारे इसका चौतरफा हमारे लगभग सारे ही सेक्टर्स पे इसका प्रभाव है, क्योंकि हमारा जो मुख्य पानी का स्रोत है वो मानसून है, और अगर ये वीक हो गया या ये कमज़ोर हो गया या ड्राउट ईयर हो गया तो हमारा वाटर स्कैसिटी हो जाएगी सिस्टम के अंदर, और वो हर सेक्टर को प्रभावित करेगी और अल्टीमेटली हमारे जीडीपी पे आएगा उसका असर
0: जी। हमारे देश में मानसून का पूर्वानुमान कितना सटीक होता है और इसके लिए कौन सी तकनीकें अपनाई जाती हैं?
1: मानसून, देखिए मानसून का पूर्वानुमान अभी तो बहुत सटीक हो गया है, और अब वो हम इसको, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए कई सारे गवर्नमेंट ने एजेंसीज बना रखी है, और लगभग आप ये मान के चलिए कि हम मानसून सीजन शुरू होने के पहले ही एक फोरकास्ट दे देती है, जो कि मेन एजेंसी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो मानसून के पहले ही एक पूर्वानुमान लगा देती है कि, और पूर्वानुमान कैसा लगाती है कि जैसे हर साल अगर 100 यूनिट पानी आता है तो इस साल वो 100 यूनिट आएगा कि नहीं, वो लॉन्ग टर्म एवरेज की बात होती है। उसको करने के लिए हम IMD दो तीन प्रकार के मॉडल्स यूज़ करती है, स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करती है, डायनेमिकल मॉडल यूज़ करती है जो कि कंप्यूटर्स पे, हाई एंड सुपर कंप्यूटर्स पे जिनको रन करते हैं, और तीसरा हम एक क्या कहते हैं इसके लिए सैटेलाइट और ऑब्जर्वेशनल डेटा का सपोर्ट लेते हैं ताकि हम उन मॉडल्स को डेवलप कर सकें। तो दो तरह के मॉडल है, एक स्टैटिस्टिकल मॉडल, एक डायनेमिकल मॉडल फोरकास्टिंग के लिए। और एक पॉइंट और मैं बोल दूँ, इसमें ऐड कर दूँ कि एक वो हो गया, फिर हर वीक का लगभग हम फोरकास्ट देते हैं, एक हफ्ते से चार हफ्ते का, और

0: फोरकास्ट एवरी डे हम इशू करते हैं, तो जो हमारी फोरकास्ट होती है उसकी एक्यूरेसी जो एक दिन पहले वाली होती है वो लगभग 80-85% उसकी फोरकास्ट एक्यूरेसी होती है जो हम 24 घंटे पहले इशू करते हैं।
1: जी सर, जैसा कि आपने एवरी डे फोरकास्ट के बारे में कहा, मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, येलो अलर्ट जारी किया गया, ये आखिर संकेत क्या दर्शाते हैं?
0: संकेत साफ हैं, जो कलर से ही समझ में आ जाएंगे कि रेड का मतलब खतरा, और रेड का मतलब कि हैवी रेनफॉल फोरकास्ट का प्रेडिक्शन है वहाँ पे। तो उस शहर में जो नागरिक हैं वो भी सतर्क रहें, और जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं, चाहे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो या सिविक एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको एक फोरकास्ट के लिए वो तैयार रहें, क्योंकि लो लाइंग एरिया में वाटर लॉगिंग हो सकती है, उनको इवैक्यूएशन करना पड़ सकता है। तो वो हो गया, और ऑरेंज का उसके नीचे और येलो का उसके नीचे और सो ऑन,
1: ग्रीन मतलब
0: ग्रीन का मतलब ये सामान्य नॉर्मल।
1: सरकार और प्रशासन मानसून से जुड़ी आपदाओं के लिए कितने तैयार रहते हैं?
0: हाँ, ये पॉइंट जो है आपका वो एकदम सही है कि इसमें जो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे मेन है कि IMD जिसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप फोरकास्ट करके बताइए कि कैसा मानसून रहने वाला है या कैसा पानी बरसेगा। उसके बाद अगर IMD जैसा आपने कहा कि रेड अलर्ट है, तो फिर हमारे किस लेवल पे है, छोटे लेवल पे है या बड़े लेवल पे है। जैसे अभी कह दें MP के ऊपर कोई एक बड़ा सा साइक्लोन आ रहा है,
1: जी
0: तो मानसून में तो साइक्लोन बहुत कम आता है, डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम से ज़्यादा आते हैं। तो मान लीजिए एक डिप्रेशन है, तो उनको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो अलर्ट हो जाएगी। अगर छोटे लेवल पे है तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वो अलर्ट हो जाएगी, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट हो जाएगा। तो एक पूरा हमारा चैनल है, एक फोरकास्टिंग चैनल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल है जो कि उसके इम्पैक्ट्स को एड्रेस करता है। तो एक पूरा ही वेल प्लान्ड सेटअप है उसको एड्रेस करने के लिए।
1: जी, अंत में मानसून से बेहतर लाभ लेने के लिए हमारे श्रोताओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप नॉर्मल मानसून का यूज़ करना चाहते हैं तो इन्जॉय करिए। ज़्यादा हल्का सा पानी बरस रहा है तो थोड़ा बाहर निकल के उस पानी को बारिश में थोड़ा सा आप घूमें फिरें, इन्जॉय करें। डैम और नदियों तालाबों से थोड़ा दूर रहें, उसमें न जाएं, क्योंकि इस समय चीज़ें थोड़ी रिस्की होती हैं। और दूसरा एक पॉइंट और ये है कि लोगों से को ये भी एक एडवाइस है कि ये हमारे पास आप अपने अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाएं और पानी का संचरण करने की कोशिश करें, क्योंकि एक हमारे महानगरों की एक जो सबसे बड़ी कमी हो गई है कि हमारा जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे जा रहा है। और दूसरा एक और क्लाइमेट चेंज जो वर्ड आपने यूज़ किया था, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसका मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको देने की कोशिश की कि कम समय में ज़्यादा पानी गिर जा रहा है
1: जी।
0: और कम समय में ज़्यादा पानी गिरने से क्या होता है, जो सरफेस रन ऑफ होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है
1: जी।
0: तो हमारा जो वाटर टेबल रिचार्ज होने की जो क्षमता है मानसून टाइम में वो कम हो रही है। तो हमें कहने के लिए हम हर साल बोलते हैं कि हमारा जितनी हमको पानी चाहिए थे 100% हमारा पानी आ गया, लेकिन जितना पानी वो रिचार्ज होना चाहिए था वाटर टेबल वो नहीं हो पाता, क्योंकि सरफेस रन ऑफ बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि पानी फिल्टर होने के लिए धरती के अंदर समय लगता है, और अगर वो खाली धीमे जब पानी बरसेगा तभी होगा। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस करें, वो भी आपके वो एक अच्छा संचरण होगा और आपकी लोकल वाटर रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा।
1: इसी के साथ मानसून कारक और प्रभाव विषय पर हमारी यह भेंट वार्ता यहीं संपन्न होती है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोताओं को इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनमोल धरा, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म इश्कियां से। स्वर है राहत फतेह अली खान के, ये गीत रचना है गुलजार की और इसे संगीत में बनाया है विशाल भारद्वाज ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हम तुमसे, सुमधुर आवाज अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। ये गीत लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत है जतिन ललित का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख है फिरोज खान का, वाचन स्वर नवनीत चौबे के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर नवनीत चौबे। सिवनी जिले में मानसून के आगमन का इंतजार करते हुए किसान खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं। पिछली रबी फसल में अच्छी पैदावार मिलने से किसानों में उत्साह है। पिछले वर्ष जिले में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हुई थी। इस बार खेती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिले में कृषि रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नत खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन लखनवाड़ा के वैन गंगा घाट पर हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का समापन उत्साह के साथ हुआ। जिले भर के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसीन नाज का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया। खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। मंडला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवनी विकास खंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां

उगाई जा रही हैं। यहां तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे शिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख था फिरोज खान का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे के। ये आकाशवाणी भोपाल है, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सागर।

श्रोताओं, हर साल 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को चुनने की एक खास वजह है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे भारतीय संस्कृति के अध्यात्म और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ मंजूरी दी और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया।

श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं कि कोई भी योग से वंचित ना रहे। कहा जाता है कि शरीर, मन और आत्मा का आपस में तालमेल बैठाना ही योग है।

श्रोताओं, योग करने के चमत्कारिक फायदे होते हैं। नियमित योगासन करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर का लचीलापन बढ़ता है। योग से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का खून का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे त्वचा पर निखार आता है और दिल की बीमारियां दूर होती हैं।

श्रोताओं, योग के अनेकों फायदे हैं। प्राणायाम और आसन हमारे शरीर के अंगों को अंदर से मजबूत बनाते हैं, जिससे बीमारियां पास नहीं भटकती। सूर्य नमस्कार और कपालभाति जैसे अभ्यास मेटाबॉलिज्म को ठीक रखते हैं और वजन को संतुलित रखने में मदद करते हैं। आजकल ऑफिस में लगातार बैठे रहने के कारण होने वाले पीठ और कमर दर्द में योग रामबाण का इलाज करता है।

श्रोताओं, आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो है अनिद्रा की। लोग नींद से परेशान हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। उनके लिए भ्रामरी, प्राणायाम और शवासन किसी थेरेपी से कम नहीं। योग और ध्यान से दिमाग शांत होता है, जिससे छात्रों और कामकाजी लोगों की याददाश्त और फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। सुबह सिर्फ 15 से 20 मिनट का योग पूरे दिन व्यक्ति को फ्रेश, एक्टिव और खुश मिजाज बनाए रखता है।

ये शरीर को मंदिर बनाने की कला है। तो चलिए इस योग दिवस पर खुद से एक वादा करें, रोज सिर्फ 20 मिनट खुद को देंगे, योग करेंगे और निरोग रहेंगे। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम को समेटने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। इसमें आज आप सुनेंगे राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन, राग है मारवा।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। इसमें आज आपने सुना राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन, राग था मारवा। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है। श्रोताओं, हम आपको बता दें आज दोपहर 3:55 पर आप सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखा गया है, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर में ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। लगभग

0: 2,935 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा 48 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर इंदौर व उज्जैन के बीच आवागमन को और अधिक सुगम एवं तेज बनाएगा। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन के लिए प्रदेश पुलिस को 5,00,000 से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया गया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म लेकिन का ये बहुत प्यारा सा गीत, स्वर थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। स्वर हैं उदित नारायण के, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम का अगला गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। ये गीत रचना है फैज़ अनवर को और इसे संगीत में बनाया है साजिद वाजिद ने। फिल्म है दबंग।

लीजिए अब सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म किंग सिंग इज किंग का ये गीत। गीत लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये है आकाशवाणी भोपाल। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रावण से। ये गीत गाया है नंदिनी श्रीकर और साथियों ने। शब्द रचना है पंछी जालौनवी की और संगीत है अभिजीत नलानी का।

कार्यक्रम का अगला और बहुत खूबसूरत गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीतमय बनाया है उत्तम सिंह ने।

डुप्लीकेट। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत। कुमार सानू की आवाज़ में शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है अनु मलिक का।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मोहरा का गीत। स्वर हैं पंकज उदास और साधना सरगम के। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है बिजू शाह का।

पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी से। स्वर है अमित कुमार और अनुराधा पोडवाल की, शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकास खंडों और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया जा रहा है। 17 से 26 जून तक इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्री मानसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुँचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से, सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना चाहें नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश इन सभी श्रोताओं की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, माही पूजा और इनका पूरा परिवार। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म महबूबा का ये बहुत प्यारा सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये गीत रचना की है आनंद बख्शी ने और इसे संगीतमय बनाया है राहुल देव बर्मन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मनसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत को सुनना चाहे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मंजिल फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत, जिसमें सुमधुर आवाज़ है लता मंगेशकर की। ये गीत लिखा है योगेश ने और इसकी धुन बनाई है RD बर्मन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हम तक फरमाइश लिख भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया है। महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने इसी गीत को पसंद किया है। राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन और चीकू सल्लू ने। उपाध्याय नगर देवास से पुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और शिवम वर्मा ने। इसी गीत के लिए हम तक फरमाइश लिख भेजी है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है इस फिल्म का गीत जिसका नाम है दिल का क्या कसूर। स्वर हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के। ये गीत लिखा है अनवर सागर ने और अनवर सागर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग।

पिछली कड़ी में आपने सुना कि धार नगरी के महाराज द्युमत सेन ने राजकुमार विजयश्रवा और नर्तकी भुवन मोहिनी के बीच प्यार की बातें जानकर भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजकुमार भुवन मोहिनी के वियोग में पड़ गया और उसके 3 महीने के अथक श्रम के

0: बाद भुवन मोहिनी का एक सुंदर चित्र बनाया। एक दिन राजमाता से उसकी मुलाकात हो गई। राजमाता ने विजयश्रवा पर ताने कसे। फिर क्या था, विजयश्रवा महल छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में अरण्यक ने बताया, भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, तो वह उससे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिया। क्या वो भुवन मोहिनी से मिल सका? जानने के लिए सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की दूसरी कड़ी।
1: आह, भुवन मोहिनी, ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब तुम मेरी दृष्टि के सामने नहीं होती। तुम मेरा परित्याग करके किस लोक को चली गई हो?
2: मैं स्वप्न लोक की छाया हूँ राजकुमार, एक छलावा बनकर तुम्हारे जीवन में समाई हुई हूँ। तुम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। मेरा चिंतन करना भूल जाओ। देखो, मेरे कारण तुम्हारे जप तप और जीवन के सारे शुभ कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। मैं तो वायु तरंगिणी बनकर अंतरिक्ष में अशांत होकर उड़ती फिरती हूँ। किसी श्रापवश अप्सरा का जीवन पाकर भूलोक में अवतरित हुई हूँ। फिर भी मुझे अपने पूर्व जीवन का पूर्ण स्मरण है राजकुमार। मैं तुम्हारी भी पूर्व जीवन से परिचित हूँ। तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर भूलोक में आए हो। वहां भी तुमने मुझे प्राप्त करने का प्रयास आरंभ किया तो देवगण तुमसे असंतुष्ट हो गए। तुम्हारे आकर्षण में मैंने भी देवताओं की अवहेलना आरंभ कर दी और देवता हम दोनों से रुष्ट हो गए और देवलोक से निष्कासित कर दिया। तुमने राजराजेश्वर के महल में जन्म लिया और मैंने अपने पूर्व जीवन के अनुकूल एक अप्सरा के गृह में। इसलिए अपने पूर्व जीवन में लौट चलने के लिए आवश्यक है कि मेरे रूप की ज्वाला में विदग्ध ना बनो। जाओ जाओ ना, मुझे सर्वदा के लिए भूल जाओ।
1: भुवन मोहिनी, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? कैसा था ये दिवा स्वप्न? एक मृग मरीचिका के सदृश? क्या वास्तव में भुवन मोहिनी मेरे जीवन में छलावा ही सिद्ध होगी? ये कौन था जो स्वप्न के बहाने पूर्व जन्म की कथा का स्मरण दिलाकर शून्य में विलीन हो गया? क्या वास्तव में इस स्वप्न की बातें सत्य हैं? क्या यह सच है कि भुवन मोहिनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा और मैं देवलोकवासी था? क्या नारी का आकर्षण देवत्व के पद से भ्रष्ट करके भूलोक का जीवधारी बनाता है? क्या भूलोक में नारी का आकर्षण भ्रष्ट नहीं करता? यदि करता है तो फिर इस जन्म के पश्चात मुझे और क्या बनना पड़ेगा? देवत्व से पतित होने पर मनुष्यत्व का पद मिला, किंतु यदि मनुष्यत्व से भी पतित हुआ तब किस योनि में जाना होगा? आह, मैं क्या करूं? कौन मेरे संदेहों का निराकरण करेगा? अरण्यक, अरण्यक!
3: युवराज, क्या हुआ?
1: क्या बात है, रथ रुका हुआ क्यों है?
3: अश्वों को विश्राम देना अनिवार्य था युवराज।
1: ओह ठीक है, विश्राम के उपरांत संध्या में ही यात्रा पुनः आरंभ होगी।
3: संध्या में ही?
1: हां, सारथी से कह दो हमारी यात्रा अनवरत तब तक चलती रहेगी जब तक इंद्रप्रस्थ नहीं आ जाता।
3: जो आज्ञा युवराज। क्या हो गया युवराज को? अरे सारथी, सारथी!
4: क्या है रण्यक, अभी अभी तो विश्राम हुआ, तनिक एक नींद तो पूरी कर लेने दो।
3: हाँ हाँ, तुम सो।
4: क्या बात है रण्यक, कोई चिंता की बात है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा ना, तुम सो जाओ।
4: झप

0: की आई ही थी कि तुमने जगा दिया। रात्रि में फिर से यात्रा करनी है?
1: रात्रि में नहीं, संध्या काल में ही।
0: संध्या काल में ही? तब तो चलो बात ही करते हैं। बताओ क्या बात हो गई?
1: सारथी, तुम्हें पता है कि हमारे स्वामी कहाँ जा रहे हैं?
0: हाँ, तुम ही ने कहा था कि इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं।
1: क्यों जा रहे हैं ये बताओ।
0: तुम ही ने मना किया था, अब तुम ही पूछ रहे हो। फिर भी बताता हूं, जहां तक मैं जान पाया हूं, भुवन मोहिनी को निकाले जाने के कारण ही राजकुमार भी राज्य को छोड़ रहे हैं, सम्राट और साम्राज्ञी को मानसिक कष्ट देने के लिए।
1: तुमने सही जाना, परंतु सारथी, अब तुमसे कहूं कि ना कहूं, बिना कहे भी तो नहीं रहा जाएगा।
0: आराम मिलेगा, कहकर देखो।
1: सारथी, देखो तो कितना नैतिक पतन हो गया है। एक क्षुद्र नर्तकी के लिए युवराज का सिंहासन त्याग देना, कौन इसे उचित कहेगा?
0: बात तो ठीक कही तुमने, परंतु हो सकता है भुवन मोहिनी का मूल्य युवराज अधिक समझते हो राज सिंहासन की तुलना में।
1: छी, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? यह तो घोर सर्वनाश है, घोर सर्वनाश। राज राजेश्वर का भौतिक सुख त्याग कर रूप की वासना में जीवन को होम कर देना निराह मोह नहीं है तो क्या है? सारथी, तुम मेरी सहायता करो।
0: कैसी सहायता?
1: किसी भी प्रकार से राजकुमार को पतन की गर्त में जाने से हमें बचाना होगा,
0: हमें?
1: वरना सम्राट द्युमत सेन के बाद राज सिंहासन का भगवान ही स्वामी है। सोचो, अगर सम्राट द्युमत सेन के बाद युवराज सिंहासन पर न बैठे तो साम्राज्य का क्या होगा?
0: हाँ,
1: एक राजा के बिना देश कैसे चलेगा? बोलो। हे भगवान, मैं तो सोच के ही परेशान हो गया। पश्चिम और उत्तर से शक और हूण जातियां आक्रमण कर देंगी, जिसका सामना छोटे छोटे राज्य नहीं कर सकेंगे। परिणाम क्या होगा ज्ञात है, परतंत्रता। राष्ट्र की प्रजा असहाय की तरह लूटी जाएगी। सीमा प्रांत की असहाय नारियां विजेताओं की विलास का साधन बन जाएंगी। राष्ट्र की पतिव्रता देवियां कुल कलंकनी कहलावेंगी सारथी, और विश्व की सर्वश्रेष्ठ नारियां भुवन मोहिनी की ही भांति तुच्छ बनकर राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बनेंगी।
0: तब क्या हुआ रण्यक?
1: तुम मेरी सहायता करो।
0: कैसे?
1: सुनो, इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर इससे पहले कि युवराज और भुवन मोहिनी की भेंट हो, हम उससे मिलकर सब कुछ बता दें।
0: किससे मिलकर?
1: अरे भुवन मोहिनी से।
0: उससे क्या होगा? भुवन मोहिनी विजय श्रवा को भुला देगी।
1: अवश्य उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करना होगा। यदि वो सबके लिए अपने सुखों का त्याग कर सकी तो अच्छा ही है, अन्यथा राष्ट्र पर आने वाली विपत्ति को हटा देने के लिए आवश्यक होगा भुवन मोहिनी का वैयक्तिक बलिदान।
0: तात्पर्य?
1: यह मैं नहीं जानता, किंतु इतना तो मैं कह सकता हूं कि भुवन मोहिनी स्वयं राष्ट्रहित को प्रधानता देगी। देना भी चाहिए, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है सबके लिए।
0: तो फिर साफ साफ बताओ हमें क्या करना होगा?
1: जैसे भी संभव हो भुवन मोहिनी से विजय श्रवा को अलग रखने का प्रयास करना होगा।
0: अरण्यक, संध्या हो गई है।
1: होने दो।
0: अरे, हमें प्रस्थान करना है।
1: अरे हां, परंतु ध्यान रखना इस बात का। चलो दैनिक चर्या करके प्रस्थान किया जाए।
0: हाँ, चलो।
2: चलो चलो, शीघ्रता करो। युवराज, प्रस्थान की आज्ञा है ना?
3: हाँ, शीघ्रता करो।
2: जो आज्ञा। चलो चलो।
1: मित्र सो रहे हैं, सो जाइए।
3: कहाँ जा रहा हूं? किस उद्देश्य से जा रहा हूं? क्या होगा परिणाम?
4: केवल सर्वनाश, अधिक कुछ नहीं।
3: हा? सर्वनाश?
4: हां, क्या तुम सचमुच उस प्रणयिनी को प्यार करते हो जो तुम्हारी दृष्टि से निर्वासित है?
3: हां।
4: क्या तुम्हें भुवन मोहिनी के अक्षय यौवना होने पर विश्वास है?
3: हाँ।
4: क्या तुम्हारा आज वाला अनुराग रंजित हृदय अपरिवर्तनशील है?

0: हाँ,
1: क्या उसकी रूप की झांकी आज जैसी कल भी रहेगी विजयश्रवा? क्या दो दिन में फूल की तरह मुरझा जाने वाला सौंदर्य अपनी सहस्त्र किरण कांति से तुम्हारी रंगीली वासनाओं को चमकाता रहेगा? क्या रुग्णा अवस्था झुलसकर इस सौंदर्य को क्रूर न बना देगी? क्या बुढ़ापे में आज का स्निग्ध मनोरम और आकर्षक शरीर झुर्रियों की लटकन से घृणित वृत्तियों को न उकसाएगा? क्या स्वयं तुम भी आज की ही भांति तरुण, स्वस्थ और बलिष्ठ रहोगे? बंद करो ये प्रश्नों की श्रृंखला। अरे, जीवन स्वयं ही अनित्य है तो फिर भुवन मोहिनी का सौंदर्य कैसे अनित्य नहीं होगा?
2: सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनित्य है। यह जीवन अनित्य, यह शरीर अनित्य, यह सृष्टि अनित्य और इस सृष्टि के सारे व्यापार अनित्य।
1: किंतु इस अनित्यता का भय ही तो सत्यम, शिवम, सुंदरम की खोज में जीव को अग्रगामी बनाता है। इस अनित्यता में ही तो जीवन का शाश्वत सत्य है। उससे इस अनित्य शरीर को क्यों वंचित रखा जाए? इस लघु जीवन में पानी की बूंद बूंद की भांति जहां सारे व्यापार स्वयं प्रेरित होकर चल रहे हैं, मैं बाधा क्यों दूं? जब परिवर्तन ही सृष्टि का अटल नियम है, तब भुवन मोहिनी का मधुमय यौवन कैसे स्थायी रहेगा?
2: इसीलिए तुम्हें शीघ्रता है।
1: हाँ, इसीलिए, ताकि इस अनित्य यौवन को स्वप्न की भांति विलीन होने के पूर्व भोग लूं। अन्यथा फिर तो केवल पश्चाताप की घड़ियां ही शेष रह जाएंगी। यौवन को यौवन की ही प्यास होती है, यौवन को यौवन के जल से ही तृप्त करना होता है, मात्र यौवन के जल से।
3: युवराज, आप इंद्रप्रस्थ पहुंचने वाले हैं।
1: शुभ सूचना दी तुमने अरण्यक। अच्छा बताओ, तुम सब लोग मुझे यहां क्या कहोगे? स्मरण है ना?
3: अवश्य स्वामिन, हम लोग यहां पर आपको श्रेष्ठीवर कहकर पुकारेंगे।
1: श्रेष्ठीवर? हाँ, मैं श्रेष्ठीवर हूं यहां इंद्रप्रस्थ में।
3: मित्र, कितने दिनों बाद आपकी उन्मुक्त हंसी सुनी, बहुत अच्छा लगा।
1: सुनो अरण्यक, सारथी को कह दो कि रथ को यमुना के तटवर्ती किसी सुरम्य उपवन में छिपा कर रख दे।
3: अरे सुनो सारथी, रथ को यमुना तट पर किसी सुरम्य उपवन में छुपा कर खड़ा करना।
4: ठीक है अरण्यक।
3: आइए युवराज। अरे वाह युवराज, आपने वस्त्र बदल लिए, आप तो विशुद्ध श्रेष्ठीवर ही लग रहे हैं।

0: साधु साधु, अरण्यक कितना सुंदर वन है। अपने रथ को यहीं पर कहीं खड़ा करवाओ, लगता है कोई आ रहा है। अरण्यक उससे पूछो किसका उपवन है ये।
1: अरे भाई सुनो, कौन हो तुम?
2: उपवन का माली हूं महोदय, आप लोगों का परिचय?
1: बस ये समझ लो कि हमारे मालिक बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं।
2: श्रेष्ठी हैं?
1: हाँ, और व्यापार के उद्देश्य से इस नगरी में आए हैं। अच्छा, इस सुंदर उपवन के स्वामी के बारे में तनिक बताओ।
2: ये उपवन चंद्रवंशी महाराज आदित्य सेन का है, जो इंद्रप्रस्थ से मिले जुले एक बड़े भूभाग के महाराजा हैं, और आजकल इस उपवन का उपयोग उनकी एकमात्र राजबाला चंद्रहासिनी के मनोविनोद के लिए किया जाता है।
1: अच्छा, तो क्या अपरिचितों का निवास निषेध है?
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि उपवन में निवास करने वाला व्यक्ति या तो इंद्रप्रस्थ से दूर का निवासी हो, या फिर वो किसी राजवंश का हो, अथवा किसी श्रेष्ठ वंश का लक्ष्मी पुत्र हो। साधारण लोग यहां नहीं रह सकते।
1: भला ऐसा क्यों?
2: इसलिए कि यदि उपवन की कोई हानि हुई तो दंड स्वरूप सहस्त्र मुद्राएं देनी पड़ती हैं।
1: अच्छा।
2: और ये तो तुम जानते ही हो।

0: कि ये दंड कोई राजवंशी या श्रेष्ठी ही दे सकता है।
1: हाँ हाँ, ये तुमने सच कहा। सुनो, तनिक इधर तो आओ।
2: क्यों?
1: ये लो 50 स्वर्ण मुद्राएं।
2: 50 स्वर्ण मुद्राएं किस लिए?
1: अरे तुम्हारा पुरस्कार। और विश्वास मानो, हम लोग इस उपवन की एक पत्ती को भी नष्ट नहीं करेंगे, और यदि भूल से ऐसा हो भी गया तो तुरंत उसका दंड भी भर देंगे।
0: मुझे विश्वास हो गया। जानते हो,
1: हाँ,
0: अभी हाल ही में राजकुमारी यहां से लौट कर गई हैं।
1: अच्छा,
0: ये जो पर्णकुटी देख रहे हो ना,
1: हाँ,
0: विशेष रूप से उन्हीं के लिए बनवाई गई थी।
1: अरे वाह वाह, ये पर्णकुटी तो किसी राजप्रासाद से कतई कम नहीं है।
0: बिल्कुल, और इसकी सारी सजधज अभी भी ज्यों की त्यों है।
1: सुनो माली, क्या हमारे मालिक इस पर्णकुटी में निवास कर सकते हैं?
0: तुम्हारे मालिक श्रेष्ठवंशी है ना?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
0: परंतु वो कब तक रहेंगे यहाँ?
1: माह दो माह। अब चिंता मत करो, जब चाहोगे चले जाएंगे।
0: तब तो ठीक है, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए। किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो मुझे बताइए। हाँ,
1: अवश्य श्रीमान, अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अरण्यक, तुमने अद्भुत कार्य किया। इंद्रप्रस्थ में ऐसे सुंदर आवास की मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
1: आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का ध्येय है मित्र। अब आप विश्राम करें और हम लोग शेष व्यवस्थाएं करते हैं।
3: हाँ अवश्य।
1: चलो, युवराज तो विश्राम करने गए, ये सारथी कहां गया? सारथ, सारथ,
4: मैं यहां घोड़ों के पास हूं अरण्यक।
1: हाँ हाँ, देखो हम लोग इंद्रप्रस्थ आ गए।
4: रथ को मैं हिलाया हूं।
1: हमें अब अपनी योजना पर अमल करना है।
4: वो भी मुझे स्मरण है।
1: राष्ट्रहित के लिए किसी भी स्थिति में राजकुमार विजय शर्मा से नर्तकी भुवन मोहिनी का मिलाप नहीं होना चाहिए।
2: अधिक तेज मत बोलो, घोड़े उछलने लगेंगे।
1: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
5: महाराज आदित्य सेन की जय हो।
6: आइए महामाते ओंकार देव, बैठिए।
5: क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं। क्या राजकाज के बारे में चिंतित हैं?
6: नहीं महामाते, आपके होते हुए हमें राजकाज की चिंता कभी नहीं हुई और न होगी। परंतु हमें राजकुमारी चंद्रहासिनी के विवाह की चिंता है। उनके लिए कोई उपयुक्त वर न मिलना हमारे लिए तनाव का कारण बना है। कोई भी राजवंशी राजकुमार चंद्रहासिनी के रूप गुण विद्या बुद्धि के अनुरूप ठहर ही नहीं पाता।
5: महाराज क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। आपके यमुना तट स्थित उपवन में धारा नगरी से आए हुए एक श्रेष्ठीवर ठहरे हुए हैं।
6: तो क्या हम अपनी राजकुमारी का विवाह एक श्रेष्ठी से करेंगे?
5: क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई।
6: हाँ बोलिए।
5: उस श्रेष्ठी के अंग प्रत्यंग की कमनीयता, उसका रूप गुण प्रभाव और आकर्षण, उसका तेजस्वी ललाट, विशाल नेत्र, वृषभ कंध, उन्नत ग्रीवा, चौड़ा वक्षस्थल, केहरी कटी, उसके चक्रवर्ती राजराजेश्वर होने के संकेत देते हैं।
6: अच्छा,
5: वो श्रेष्ठी आसपास के ग्रामीण जनों में कौतूहल का विषय बना हुआ है।
6: यदि ऐसा है तो उसे पहचानना कोई कठिन काम नहीं है। यह काम भुवन मोहिनी कर सकती है।
5: भुवन मोहिनी,
6: जिसे धारा महाराज ग्युमत सेन ने निर्वासित कर दिया था और हमने अपने यहाँ शरण दे रखी है।
5: अच्छा अच्छा, वो नर्तकी?
6: हाँ वही, भुवन मोहिनी धारा नगरी के सम्राट ग्युमत सेन की प्रमुख गायिका रही है, और वो वहाँ के प्रधान सामंतों और श्रेष्ठियों को अवश्य पहचानती होगी।
5: अवश्य देव, यह कार्य उसके द्वारा सरलता से कराया जा सकता है।
6: भरत।
0: आज्ञा महाराज।
6: जाकर भुवन मोहिनी से कहो कि हमने उन्हें याद किया है।
0: जो आज्ञा।
6: परंतु महामात्य, यदि वो कोई राजवंशी हैं तो इस तरह श्रेष्ठी बनकर आने की क्या आवश्यकता है? कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है?

0: यह बात विचारणीय है महाराज, परंतु इसका निराकरण भी उसकी पहचान होने के बाद ही किया जा सकता है।
1: महाराज, देवी भुवन मोहिनी उपस्थित होने की आज्ञा चाहती हैं।
2: हाँ, आज्ञा है।
1: आइए देवी।
3: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
2: नर्तकी भुवन मोहिनी, राजसभा तुम्हारे बिना सुनी ज्ञात होती है। तुम्हें सर्वदा मेरे आने के पूर्व ही राजसभा में उपस्थित होना चाहिए।
3: अपराध क्षमा हो देव, दासी के अस्वस्थ होने के कारण ही आज अनुपस्थित होने का अपराध बन पड़ा है। भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी।
0: नर्तकी, इधर आओ।
3: प्रणाम महामात्य।
0: देखो नर्तकी, क्या तुम्हें ज्ञात है कि यमुना के किनारे पर अवस्थित राजोद्यान में धारा नगरी का कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है?
3: धारा नगरी का?
0: हाँ, धारा नगरी का।
3: मुझे ज्ञात नहीं है महामात्य।
0: अरे, तो क्या तुम अभी राजकुमारी के साथ उस उपवन में निवास नहीं कर रही थी?
3: देव, उस समय कोई नहीं था।
0: तो ठीक है, कल वहां जाकर गुप्त रूप से पता लगा कर आओ कि उस राजोद्यान में स्थित पर्णकुटी में ठहरने वाला कौन है। यद्यपि वह अपने को धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठी का पुत्र बताता है, परंतु हमें शंका है। उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए।
3: जो आज्ञा महामात्य, कल राजकुमारी दीपरागनी सिद्ध करने वहां पुनः जाने वाली है। मैं भी चली जाऊंगी। महाराज, राजकुमारी ने अपने पिछले निवास काल में दीपरागनी का विशेष अभ्यास किया था महाराज। कल उसी का महोत्सव है।
2: अच्छी बात है।
0: किंतु वहां उस अपरिचित व्यक्ति के होते हुए क्या बाधा उत्पन्न नहीं होगी नर्तकी?
3: नहीं महामात्य, अब वो पर्णशाला में नहीं, राजोद्यान के प्रासाद में अपना कार्य करेंगी। और जहां तक संभावना है, वो व्यक्ति पर्णकुटी में ही रुका होगा।
0: हाँ, पर्णकुटी में ही रुका है। तुम उसके बारे में पूरी जानकारी ले आना।
3: जी महामात्य।
2: भुवन मोहिनी, चलो, माना कि आज तुम कुछ अस्वस्थ हो, फिर भी तुम्हारा नृत्य और गायन देखे बिना हम भी अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए चलो, अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत करो, परंतु उसके बाद महामात्य ने जो आदेश दिया है उसको अवश्य पूरा करना।
3: जो आज्ञा देव।
4: कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत अभी आपने सुना धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रूट पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। नीट परीक्षा के लिए भोपाल में कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 21 जून को 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि नीट परीक्षा के चलते शहर के कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रदेश में प्री मानसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा

0: बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे प्रयास चाहे कितने ही छोटे हों, जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस सुंदर से विचार के साथ हाजिर हूं मैं कल्पना मिश्रा, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। स्वीकारिए मेरा नमस्कार। बहनों, यूं तो सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लेकर आती है, जिससे उनका समाज में स्तर ऊंचा हुआ है। वैसे ही एक योजना पारित की गई जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक भी कहा जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है और ये लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि एक तिहाई आरक्षित करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है। उनकी ये सोच साकार हुई और ये विधेयक बनाया गया। बहनों, इसकी विशेषताओं पर बात करें तो यह कानून सीधे तौर पर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही कुछ आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसकी जो समय सीमा है वो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, परंतु इसके बाद इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा नया निर्णय लिया जा सकता है। बहनों, यह कानून परिसीमन प्रक्रिया और नई जनगणना के बाद लागू होता है। यह संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया था। दोनों सदनों द्वारा भारी बहुमत से पारित होने के बाद यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया और भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है, जो कि महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बहनों, आज हैं हमारे बीच संध्या तिवारी जी, जो कि शांति कुंज हरिद्वार महिला मंडल की कार्यकर्ता समाज सुधारक हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। तो आइए इसी विषय पर इनसे बातचीत करते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप इस संस्था से कब से जुड़ी हैं और इसका उद्देश्य क्या है, वो आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: इस संस्था में जुड़ने का सौभाग्य बचपन से ही प्राप्त हुआ। मेरे माता पिता गायत्री परिवार से जुड़े और उन्होंने मुझे प्रेरणा के रूप में इस गायत्री परिवार के साथ जोड़ा। संस्था का उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। वास्तव में देखा जाए तो धरती का देवता मनुष्य ही है, पर उसके पूर्व मनुष्य मनुष्य बने और मनुष्य से ऊपर उठ करके देवता बन जाए, इसके लिए ये ऋषि प्रणीत योजना है, जिसे गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है, युग निर्माण योजना के नाम से जाना जाता है और विचार क्रांति अभियान के नाम से जाना जाता है। युग निर्माण योजना कहने का तात्पर्य यह है कि इस योजना में मूलभूत 3 सूत्रों को लिया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। इन तीनों के निर्माण से ही विश्व निर्माण संभव है, जो हमारी संस्कृति में एक नारा है, वसुधैव कुटुम्बकम, और उसके पूर्व आत्मवत सर्वभूतेषु। इसी को हमारा मिशन कहता है, आत्म कल्याण से लोक कल्याण। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, पहले अपनी आत्मा का के उत्थान के साथ। यदि केवल आत्मा के उत्थान के साथ बहुत लोग गुफा कंदरा में बैठ करके तपश्चर्या इत्यादि करते हैं, वो आवश्यक है, लेकिन समाज में भी एक प्रकार की तपश्चर्या होती है। समाज के लिए अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यक्ति जब तक लोक कल्याण या परमार्थ भाव के साथ नहीं चलेगा, तो ये समाज का उत्थान संभव नहीं है। मिशन का ये उद्देश्य है, धरती पर स्वर्ग का

0: अवतरण से तात्पर्य कि धरा एक सुखी समृद्ध सानंद उत्साह पूर्ण जीवन जीने की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य रहे। धरती का में स्वर का अवतरण का तात्पर्य यह है। ये दोनों सूत्र लेकर के मिशन चल रहा है। वैसे देखा जाए तो मिशन का बड़ा व्यापक उद्देश्य है। लघु से विभू तक की यात्रा ये मिशन करने की प्रेरणा देता है कि छोटे से बड़े कैसे बने, और छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर के जो हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म स्तर के जीव जंतुओं से लेकर के ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सारा का सारा कैसे उत्कृष्ट बने, इन विचारों को लेकर के ये मिशन चल रहा है।
1: जी दीदी, आपके विचार बहुत ही महान है। तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली?
0: जैसा कि आपको गायत्री परिवार के बारे में जानकारी होगी, गायत्री परिवार ने नारी जागरण का बीड़ा उठाया, और उस नारी जागरण के बीड़े के साथ जिसको हम महान सत्ता ने इस बीड़ा को उठाया, उसे हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी बोलते हैं, उन्होंने ऐसे समय पर नारियों को के उत्थान का मौका दिया जब नारियां केवल चार दीवारी के अंदर बंद थीं, शोषित थीं, दमित थीं, उनको कहीं स्वतंत्र जीने का या अपने आप को उठाने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया कि हमको नारियों को, महिलाओं को ऊपर उठाना है, और उन्होंने उसके लिए जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो पहले कभी था, आदिम जमाने में, आदि काल में ये था कि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों बराबर थे, महिलाएं भी वो सारा काम करती थी जो पुरुष करते थे, पर वो बीच का काल जो हमारा गुलामी का काल आया, परतंत्रता का काल आया, उस काल में महिलाओं का पतन हुआ, उनके जीवन का पतन हुआ, और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी तरह वो घर की चार दीवारी में बंद करके उन्होंने एक प्रकार से उनका जीवन ही बंद हुआ। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने बहनों को लेकर के, नारियों को लेकर के, छोटी छोटी कन्याओं को लेकर के एक क्रम शुरू किया। उन कन्याओं को प्रशिक्षण दे करके जिन्हें उनने देवकन्या नाम दिया, देवकन्याओं के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण का क्रम संपन्न कराया। वो देवकन्याएं साधना भी करती थीं, और उस साधना कर श्रेष्ठ विचारों को जन जन तक फैलाने का काम यज्ञ माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से करती थीं। एक बार वो देवकन्याओं की टोली आई, उन देवकन्याओं की टोली के साथ मुझे रहने का, बातचीत करने का, उनको देखने का, निकट से देखने का मौका लगा, और मेरे अंदर प्रेरणा जागी कि मैं भी ऐसा ही काम करूँगी।
1: जी जी जी।
0: और उस प्रेरणा के साथ मैंने इस मिशन को और पक्के से चुना, और चुन करके गुरुदेव माता जी को अपना गुरु बनाया, इस संस्था को अपना लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना करके इस संस्था में मैं कितना मैं कर पाई मैं इसको नहीं कह पाऊंगी, लेकिन प्रयास मेरा ये कि इस संस्था में मैं पूरी तरह अपने आप को झोंक करके काम करती रही, और अभी तक मैं काम कर रही हूँ।
1: जी जी जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीदी, आपको हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो आखिर में आप अपने सुंदर विचार उन तक पहुँचाएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी।
0: सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमें आप तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। ये अपनों से अपनी बात है, कई बार अपनों से अपनों तक पहुंच नहीं पाते, इससे ये सशक्त माध्यम है। इस सशक्त माध्यम का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पर एक निवेदन तो मैं करना चाहती हूँ कि हमारा देश भारत, ये देश सोने की चिड़िया और जगत गुरु रहा है। हम सबको मिलकर के, चूँकि उस क्रम में एक प्रकार से देखा जाए देश पटरी पर आ चुका है, जगत गुरु बनने की पूरी संभावनाएं, पूरे आसार, पूरी किरण दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा हम लोग मिलकर के इस दिशा में हम अपने देश को धक्का लगाएं, और आध्यात्मिक देश होने के नाते हम सब अपनी साधना को या अपने आध्यात्मिक या आत्मिक उत्थान को देखते हुए हम अपने आप को साधना की ओर ले जाएं, क्योंकि हमारा देश साधना की धुरी पर खड़ा है। आपको एक निवेदन और करना चाहूंगी, जब हमारा देश परतंत्र था तो दो धड़े काम कर रहे थे, एक धड़ा बाहर जो सीधा देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में भाग ले रहा था, और एक धड़ा अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप में काम कर रहा था, जिन्हें हम ऋषि कह सकते हैं, जिन्हें हम साधक कह सकते हैं। एक बल था साधना का बल, उन लोगों ने, ऋषियों ने, साधकों ने, सिद्धों ने, संतों ने, तपस्वियों ने साधना का बल देश को दिया, और उस बल के सहारे लोगों ने प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ करके देश को आज़ाद किया। वही क्रम हम सब मिलकर के करें, अपने साधना के बल को मजबूत करें, अर्थात हम साधना की धुरी पर खड़े होकर के

0: अपने आप को अपना निर्माण करें, व्यक्ति निर्माण जिसको कहा है, व्यक्ति निर्माण करें और साधना के बल पर ही यदि हमारा स्वयं का निर्माण हो तो परिवार निर्माण सहज हो जाता है। हम बने तो हमारा परिवार बना, व्यक्ति एक इकाई है, परिवार उस इकाई के सहारे परिवार बनता है और इस परिवार के सहारे समाज बनता है और समाज के सहारे पूरे विश्व का निर्माण होता है। तो निवेदन ये है कि हम मिल करके इस दिशा में सार्थक प्रयास करें और सार्थक प्रयास कर पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हम उस विश्व में जी सकेंगे धरती पर जहाँ स्वर्ग दिखाई देगा, उस स्वर्ग में हम सब सुखी सानंद समृद्ध आत्मीय भाव से जी सकेंगे, अपनत्व भाव से जी सकेंगे, एक दूसरे के साथ जी सकेंगे।
1: दीदी आप एक पंक्ति में अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए।
0: एक पंक्ति में यदि संस्था के बारे में कहा जाए तो एक ही देश है मनुष्य का कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। संस्था केवल हर व्यक्ति से हर मनुष्य से यही चाहती है।
1: दीदी आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और साथ ही इतनी अच्छी जानकारी

0: कुछ बताइए।
1: एक पंक्ति में यदि संस्था के बारे में कहा जाए तो एक ही देश है मनुष्य का कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। संस्था केवल हर व्यक्ति से, हर मनुष्य से यही चाहती है।
2: दीदी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और साथ ही इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। नमस्कार।
3: नमस्कार। रास्ते मुश्किल नहीं, सोच कमजोर होती है। रास्ते मुश्किल नहीं, सोच कमजोर होती है। इरादा मजबूत हो तो मंजिल भी झुकती है।

स्कूलों की छात्राओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेरित करेगी और उन्हें जानकारी देगा। और इसका उद्देश्य कक्षा 9 से कक्षा 12 तक मेधावी छात्राओं पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से ग्रामीण और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं पर, ताकि वैज्ञानिक क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को कम किया जा सके। यह कार्यक्रम की विशेषता यह भी है कि यह वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, मतलब प्रमाणित तथ्य के आधार पर समस्या का समाधान करना, कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देना, जैसे लड़कियों को जेई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। साथ ही साथ अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का पूरक माना गया है। बहनों, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम इतना प्रभावशाली साबित हो रहा है कि कक्षा 11वीं और 12वीं में विज्ञान विषय चुनने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। गणित और विज्ञान विषय में रुचि बढ़ने के साथ साथ इन विषयों पर समझ बेहतर हुई है। हम देख रहे हैं कि जेई और नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। लड़कियों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर बनाने को लेकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है। तो इस तरह यह योजना महिला उत्थान के लिए प्रभावशाली साबित हो रही है। अब आइए मनोरंजन की तरफ चलते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में प्यारा सा गीत। फिल्म है दो कलियां।

बहनों, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में है, मतलब कि कोई ऐसा काम उनसे अछूता नहीं है जिसमें उनकी भूमिका ना रही हो, और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस काम में। अब जैसे एक और योजना है, विज्ञान ज्योति योजना। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता लाना है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ में शिक्षा और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम आसपास के सरकारी

अभी हमने दो कलियां फिल्म का गीत सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। बहनों, इस चिपचिपाहट और उमस भरी गर्मी में स्किन प्रॉब्लम होना तो लाजमी है, जैसे एक्ने की समस्या, पिंपल्स होना

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत बन्ना गीत से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है, और आज आप सुन रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। पेश है परछन गीत, आवाज ज्योति तिवारी की।

ज्योति तिवारी के गाए इस सोहर गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ भजन और गीत।

अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मानंद की रचना, आवाज़ थी प्रकाश तिवारी की। आइए अब सुनते हैं प्रकाश तिवारी की आवाज़ में ये गीत, रचना नीरस की है।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता।

0: भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना काला पानी फिल्म का गीत शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत एस डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत ओ पी नैयर का।

0: लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। ये दिवस राज्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आज के ही दिन इस बात की पुष्टि हुई थी कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अमूल्य भूमिका का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
2: कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है, मेट्रोपोलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय, बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है।
1: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। ये परियोजना माँ क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए

0: इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय, बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है।
1: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुँचने की अपील की गई है। वहीं नर्मदापुरम में परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकासखंड पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। आज भोपाल में बड़ा तालाब के बोट क्लब से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को इस वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉम्सन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश कर रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्य मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 245 नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2021-22 के करीब 8,000 छात्रों की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
4: ओडिशा के आदिवासी इलाकों तक पहुँचने की एक

0: कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा उड़ीसा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।

कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसका पुनर्निर्माण, केदार धाम बद्री धाम का पुनर्निर्माण, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का

0: बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार NEET UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग

0: शिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम अकेले हम अकेले तुम फिल्म के गीत से। आवाज शैली शैलेंद्र की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत अनु मलिक का है। और पसंद करने वाले हैं आप सब डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से इसे पसंद कर रहे हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी दतरंगी से भागवत वर्मा और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत। आवाज़ शैली शैलेंद्र की।

अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शैली शैलेंद्र की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। आवाज़ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना मजरूह की और संगीत राहुल देव बर्मन का। और पसंद करने वाले श्रोता हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा। गौरीनगर इंदौर से इस गीत को पसंद कर रहे हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, श्रीमती सविता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवांडकर, श्रीमती वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, परी की। आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म यादों की बारात से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और मैं आपके साथ हूं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजपिए राधिका गजपिए बेबी अनिष्का और तन्मय गजपिए की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिम्पल देवांगन। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से इसे सुनना चाहते हैं जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक शोभा नायक समस्त डागला परिवार। औरंगाबाद से राजेश साबले शीतल राजेश राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सब सुनना चाहते हैं इंदिवर का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज़ साधना सरगम और कुमार शानू की है और फिल्म है जुर्म।

जुर्म फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की और फिल्म है आस का पंछी। गीत को पसंद करने वाले श्रोताएँ हैं धमनी किरवई से समीलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, गोविंद धीवर, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा।

ऋषि वर्मा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म आस का पंछी का गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए दम लगा के हईशा फिल्म का गीत, पपोन की आवाज़ में। शब्द रचना वरुण ग्रोवर की और संगीत अनु मलिक का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

0: अभी आपने सुना पप्पून की आवाज़ में दम लगा के हईशा फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: फिर इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है और आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा 2:55 पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं 5:33 पर, 6:15 पर और 8:35 पर। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का 6वां भाग आप सुनेंगे 6:00। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण

है 7:45। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आप सुनेंगे रात 8 बजे। 9:30 पर आप सुनेंगे चित्र भारती और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए विवेक कर्माही का गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 मिनट और 21 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेशे कार्यक्रम लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए लोकगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का अगला गीत परचन गीत, आवाज ज्योति तिवारी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कार्यक्रम है लोक संगीत और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का अगला गीत है सोहर गीत, आवाज ज्योति तिवारी की।

ज्योति तिवारी के गाए सोहर गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ भजन और गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तुलसीदास की रचना से आवाज़ प्रकाश तिवारी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कार्यक्रम है सुगम संगीत और अभी आपने सुनी तुलसीदास की रचना आवाज थी प्रकाश तिवारी की। अब सुनिए ब्रह्मानंद की रचना आवाज एक बार फिर प्रकाश तिवारी की।

0: आना आना।
1: अभी आपने सुनी ब्रह्मानंद की रचना, आवाज थी प्रकाश तिवारी की। आइए अब सुनते हैं प्रकाश तिवारी की आवाज में एक गीत, शब्द रचना नीरज की।

प्रकाश तिवारी जी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेशे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर के गीत से। आवाज उदित नारायण और साधना सरगम की, शब्द रचना मजरू की और संगीत जतिन ललित का।

जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरू ने और संगीत जतिन ललित का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म आशिकी से, आवाज़ कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आशिकी फिल्म का गीत। शब्द रचना थी रानी मलिक की और संगीत नदीम श्रवण का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं परदेश फिल्म का गीत, हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति आदित्य नारायण शंकर महादेवन की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

परदेश। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण, शंकर महादेवन की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत नदीम श्रवण का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए रोजा फिल्म का गीत हरिहरन की आवाज में। शब्द रचना है पीके मिश्रा की और संगीत ए आर रहमान का।

हरिहरन और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना रोज़ा फिल्म का गीत, शब्द रचना थी पीके मिश्रा की और संगीत एआर रहमान का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अब आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of.

0: This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल, व्हेन द कंट्री डेवलप्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal winning a historic election Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister, and they wish to see the promises which the Prime Minister did कम ट्रू।
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य

0: अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people have waited for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVK's ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
0: बिल्कुल। तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है, और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव, और बंगाल

0: महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है, और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य संगीत कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are doing so many steps. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile.

0: buy more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Viksit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है, और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है, ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद, या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है, कि देश में ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ें, ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आप आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है, कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं, वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: Absolutely, Siddharth, the word that you've used, and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere, completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain, ki aap swayam wo faisla le paayein, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments, who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं, 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाज़ें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Shri Suvindu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी
0: और सम्मान का प्रतीक है. पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: जी हाँ प्रधानमंत्री, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल

भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल रोड कृषि मछली पालन इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे

रहे हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी, और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई।

वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा और पश्चिम बंगाल के रूप में

इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई, सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने

लगा है, जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज

संकरेल संतरागाची लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फ्रेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी

0: हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म लक से। सलीम मर्चेंट की आवाज़, शब्बीर अहमद के लिखे बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म विवाह से, उदित नारायण।

जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता है से। आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। संगीत था शंकर एहसान लॉय का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। गुलजार की शब्द रचना, शंकर एहसान लॉय का संगीत और फिल्म का नाम है बंटी और बबली।

श्रोताओं, फिल्म बंटी और बबली जैसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया फीडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया फीडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
8: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के रायरंगपुर जिले के

0: दांड बोस में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य सार्वजनिक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर ओडिशा की जनता के लिए 47,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लिया गया है। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे और विश्व प्रसिद्ध श्री पीताम्बरा पीठ में मां बगलामुखी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल श्री कृष्णा मालीवाड़ एवं साथी मांडू द्वारा भील जनजातीय भागोरिया नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम की तो बात ही निराली है दोस्तों, है ना। श्रोताओं, बारिश लगभग हर जिले में पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वहां भी बस पहुंचने ही वाली है। तो श्रोताओं, क्यों ना इस बारिश के मौसम का लुत्फ उठाया जाए और सेलिब्रेट किया जाए इस त्यौहार को। तो आइए इसी उपलक्ष्य में हम सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म लगान से।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान, किशोरी गोवारीकर और साथियों की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म लगान से। जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत था एआर रहमान का। श्रोताओं, आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुरु से। श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ें हैं। गुलजार की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने।

फिल्म बाघी का गीत अभी आप सुन रहे थे मीत ब्रोज और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में। कुमार के लिखे बोलों को संगीत दिया था मीत ब्रोज ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म नमक हलाल से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, अनजान के लिखे बोल और बप्पी लहरी का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म चुपके चुपके से, आनंद बख्शी के बोल और एसडी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म छलिया से। मुकेश की आवाज़, बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

संतोष आनंद का लिखा गीत सुनिए फिल्म प्यासा सावन से। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ें हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म मंजिल का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। योगेश के लिखे इस गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म अजनबी से। आनंद बख्शी के लिखे बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया SD बर्मन ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गीत आइए अब सुनते हैं।

यह है फिल्म लोफर से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत हम सुनेंगे, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोता, मोहम्मद रफ़ी के गाए ऐसे गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर

किया। जत्थे में दो संपर्क अधिकारियों और एक चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 पर। कार्यक्रम चित्र भारती का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विवेक करमाहे का ठुमरी और दादरा गायन रात्रि 10:00। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी रविवार 21 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। सुबह 11:40 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 7:20 और सुबह 10:30 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे अनीता यादव के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गायन शिक्षण पाठ। श्रोताओं, सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा।

फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण सुबह 11 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का तीसरा भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 12:15, दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत और शाम 6:30 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। और रात्रि 8 बजे सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वन्य जीवन।

श्रोताओं, ये थे कल यानी 21 जून 2026 रविवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 9,44,00,000 से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। इंदौर में 2,935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। और भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश के का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है।
5: सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
4: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपये, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
6: मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है। क्या हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे? हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है। प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। सुना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा।
4: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ छिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री

0: राज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जनकल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया।
1: भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। ये मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने

0: खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सके। ये मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
1: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।
1: केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्री मानसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैयर, उमरिया, शहडोल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में

विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलेंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया। और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनवे वे सभी भैया बहनन को अमृता बहन की राम राम और आप सभी को स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो भैया बहनों, सबसे पहले तो जो बताओ कि हाल चाल का है, और अपन देख रहे हैं कि मौसम बदल गया है, गर्मी से तनक राहत मिली है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब जो अकबकाई वाई गर्मी हो रही थी वह कम हो गई, और अब तो आज कछु क्षेत्रन में बरसात भी गिर गई है, जो तनक ठंडक सी पसर गई है, जो जाए बहुत अच्छी बात है। मनोबदल तो मौसम है, क्योंकि अब गर्मी से हम बरसात की तरफ जा रहे हैं, तो संक्रमण वाई बीमारी होवे की भी कछु संभावना बनी रहते है। देखो, संभावना हर चीज़ की रहते है, मानो बचवो सबसे बड़ी बात है। तो कचू कचू हम बातन को ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, परिवार की देखभाल करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आज शनिवार के दिन आप सबके संग ग्राम सभा में जुड़ गए हैं, चर्चाएं हुई हैं, करेंगे मनोरंजन, सुनेंगे बुंदेली समाचार। सो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना के संगे। जी, एक गाँव है बाबूलाल कुशवा और उनके साथी अन्य।

0: सो भैया बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं। बिरिया हो गई है बुंदेली समाचारन की, सुनते हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं अमृता जैन। आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त दी है। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी कृषकन के बैंक में खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित करी गई थी। ई अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि ई बार पश्चिम बंग दिवस की जा तारीख और भी कछु खास है। आज़ादी के बाद बंगाल के उज्ज्वल भविष्य के लाने जो सपनों देखो गए हो तो बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना करी थी। आज पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पे उन सपनन की सच्चाई को बदलत देख रहे हैं। जहाँ ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नव और गौरवशाली इतिहास रचें। आज भाजपा NDA सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत भई है। इससे पहले ओडिशा के मयूरभंज जिला के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होवे के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करत भय उन्होंने कही थी कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकन से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिले हैं। ये अवसर पे उनने 47,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना को उद्घाटन और शिलान्यास करो हतो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिला के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को भूमि पूजन करो। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपया है और लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी कि इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर विकास की पर्याय बनेगो। इसे स्थानीय लोगन के संगे संगे भविष्य की पीढ़ियन को व्यापक लाभ मिले। ई महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। ई के पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्ह डाइवर्जन क्लोज एक्डक्ट परियोजना को निरीक्षण करो हतो, विकास कार्यों की प्रगति को अवलोकन भी करो हतो। जा परियोजना माँ शिप्रा के जल को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाओ जाए। ई वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, जो विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थान पे विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित करोगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हुई हैं। समारोह सदन के गैरिसन ग्राउंड में भुंशारू 7:30 बजे से प्रारंभ हो जाए। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि बनेंगी। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवान के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दो है। जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे करी गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लाग गौ है। समिति ने पाओ है कि इन दवा के संयोजन को पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपाय से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी हो रहे हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐठन और कछु एंटीबायोटिक दवाइयां शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कही थी कि ई कदम को उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवो है। NEET UG पुनः परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित करी जे है, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुई हैं। परीक्षा में CCTV कैमरा की निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्था करी गई है। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होवे वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने डाइवर्जरी दई है। शहर में परीक्षा के लाने 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलत भय कछु मार्गों पे यातायात प्रभावित रहे। परीक्षार्थियों से समय से कम 30 मिनट पहले

0: केंद्र पे पहुंचने की अपील करी गई है। अब कछु बातें मौसम से संबंधित। प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकत है। फिलहाल प्री मानसून गतिविधियन के चलत मौसम में बदलाव बनो है। बुंदेली समाचार समाप्त भय।
1: बुंदेली समाचार।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
2: चले
3: ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: तो भैया बहनों, अल्पविराम के बाद आप सभी को पुनः स्वागत है। अभी सुने अपन ने बुंदेली समाचार, और अब कार्यक्रम में सुनत हैं लोकगीत जिए गाँव है आरती तिवारी ने।

तो भैया बहनों, लोकगीत के बाद आप सभी को पुनः स्वागत है और आप कछु बातें करते हैं। तो भैया बहनों देखो, आपने एगमार्क नाम सुनो हुई है ना, तो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादन के लाने एक प्रमाणित चिन्ह बनाओ गए है जो उत्पादन की गुणवत्ता, शुद्धता और मानकीकरण अर्थात कि जो भी उत्पादन है वो कितेक सही या गलत है उसको सुनिश्चित करत है। जो चिन्ह कृषि उपज अधिनियम के अंतर्गत विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा दौ गौ है। अब देखो, अपन जो जानते हैं कि कृषक खेती करत है और उकी उपज होते हैं तो बा उपज कितनी सही है। कई कृषक ऐसे भी है जो बहुत अच्छे उत्पादन लेते हैं, मनो एक प्रमाणीकरण की वजह से उन्हें बा सही कीमत नहीं मिल पाते, तो ऐसे में एगमार्क एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसे कृषक अपनी मेहनत को सही लागत लेते हैं। अब आप नाम से ही समझे, नाम का है एगमार्क। अंग्रेजी के दो शब्द एग्रीकल्चर अर्थात की कृषि और मार्क अर्थात की चिन्ह से जुड़ो है। अब इसे हम अपने उपभोक्ताओं के लाने जो भी कह सकते हैं कि खरीदारी करवे वाले उपभोक्ता को सरकार द्वारा जो आश्वस्त करो जात है कि उत्पाद सरकार के द्वारा

निर्धारित गुणवत्ता मानकों पे सही उतरो है। और अब हम जो बात करें कि ई श्रेणी में मुख्य रूप से कौन कौन से उत्पाद आते हैं, तो देखो भैया बहनों, दालें, अनाज, मसाला, शहद, मक्खन, वनस्पति तेल जैसी कई ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिन्हें एग मार्क लगाओ जाते हैं। इन सब उत्पादों को प्रयोगशाला में जाँच करके एग मार्क लेवल दो जाते हैं और इनके भी अलग अलग श्रेणी रहते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ऐसे इन्हें विभाजित करो जाते हैं। तो यदि आप भी ऐसे कोई उत्पादों को बना रहे हैं और बाजारों में इनकी एक अच्छी कीमत ले वो चाहते हैं, तो आप एगमार्क लाइसेंस लें और ई के लाने डीएमआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से समस्त प्रक्रिया की आप जानकारी ले सकते हैं। तो भैया बहनों देखो, जा एक महत्वपूर्ण जानकारी हती और चर्चा अभी अपनी और भी चल है। मनो अभी सुनत है लोकगीत, जी ये गाँव है अनरथ लाल बैरसिया ने।

तो भैया बहनों, अब लोकगीत के संगे अब आगे बढ़े और देखो, चर्चाएं हम कृषि से संबंधित कर रहे हैं और ग्राम सभा के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई गई नई नई योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताते रहते हैं, जिससे कि आप उनको लाभ लें और उसे लाभांतरित हों। ऐसे ही एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्य योजना में से एक है, जिसको उद्देश्य समूह आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देवो है। ई योजना से कृषक को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके और सुरक्षित व पौष्टिक भोजन के उत्पादन में मदद मिलत है। योजना में 20 से 50 हेक्टर के समूह बना के कृषकों को संगठित करो जाते, मतलब कि 20 से 50 हेक्टर तक की जितनी भी कृषि भूमि है उनके अंतर्गत जितने भी कृषक आते हैं उनको एक संगठित करो जाते हैं, जिसे वे अपने संसाधनों को एक दूसरे से साझा करें और उनकी लागत कम हो सके। बीज से लेके उत्पादन प्रमाणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार तक उत्पादन पहुँचावे में सहायता मिलत है ई योजना के माध्यम से। इसके अलावा खाद्य कीटनाशक खरीदवे हेतु कृषकों के खाते में सीधी राशि अंतरित करी जाते हैं। जैविक प्रमाणीकरण भी दो जाते हैं, जिसे उत्पादक की गुणवत्ता पतो चलत है। देखो, अभी अपन ने जैसे पहले बात करी एगमार्क की, ऐसे ही जैविक प्रमाणीकरण भी आपको मिलत है, जिसे क्या होता है कि आपको जो भी उत्पादन है उनको एक उचित मूल्य आपको मिलत है। प्रमाणीकरण लगवे से सबसे अच्छी बात जा हो जाते है कि जो भी आपको उत्पादन है, जब वो बाजार में जाते और उपभोक्ता जब वो खरीदा थे, तो वो जब वो प्रमाणीकरण को जो भी चिन्ह है या जो भी में लगे हैं वे देखते है, तो वो समझते हैं कि जो एक अच्छा उत्पादन है और सरकार द्वारा जी प्रमाणीकरण मिलो है, तो उस पर विश्वास बढ़ा थे। और ऐसे में यदि थोड़ी कीमत ज़्यादा भी देने पड़े तो उपभोक्ता देते हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लाने एक अच्छा प्रमाणीकरण बहुत आवश्यक है। और टिकाऊ और जैविक खेती करवे हेतु प्रशिक्षण भी दो जाते। यदि कोई भैया ऐसे हैं जो जैविक खेती की तरफ बढ़वो चाहते, कई कृषक भैया बहन ऐसे हैं कि जो इन तरफ आगे बढ़वो चाहते हैं, मनो इनकी सही दिशा नहीं पतो होते हैं, तो ऐसी योजनाओं से आप जुड़ें, तो ऐसे में आपको खेती करवे हेतु प्रशिक्षण दो जाते। आप प्रशिक्षण लें और फिर आप जब जैविक खेती करेंगे और जो जैविक उत्पाद होंगे, तो आप जानते हैं कि आज बाजारों में जैविक खेती की जो भी उत्पाद हैं, जो भी उत्पादन हो रहे हैं, उनसे बनी सामग्रियों की मांग है और इके लाने एक अच्छी कीमत भी मिलत है। तो भैया बहन अपने ऐसे छोटे छोटे समूह बना के ऐसे योजनाओं से जुड़ें और नई नई योजनाओं के लाभ लेते रहें, जिसे क्या होते हैं कि आपको आज जो कम लागत लगत है और आपके जो उत्पादन है उनमें जो आपको फायदे होते हैं, तो आपकी आय बढ़त है। तो आप इन योजनाओं से जुड़ें। और ई योजना को जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें लगत है कि यदि आपको प्रशिक्षण हेतु कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप नज़दीकी कृषि केंद्रों पर जाएँ और अधिक जानकारी लें। तो भैया बहनों, देखो आज आपसे चर्चा कर रहे हैं और अब चूंकि चलवे की विधिया हो रही है, काहे कि अब कार्यक्रम अपन इतने समाप्त करवे वाए हैं, मनो आप लोगों से जो ही कहेंगे कि कार्यक्रम से आप जुड़े रहें और ग्राम सभा के अंतर्गत आप लोगों से जो भी सरकारी योजनाएं या अन्य बातों पे जानकारी दी जाते उनसे आप जुड़े और आप लोगों से ही हमारा जो कार्यक्रम इतना सुंदर बना थे। तो अब हो गई है चलवे की बिरिया, आप सबसे विदा लें, ये चलती बिरिया आप सब खो। अमृता बहन की राम राम।

ग्रामीण श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान हौसलों की, उड़ान कुछ नए सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाकर बेताबी से आपका इंतजार कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम उड़ान। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप हमारा नंबर लिख लें। तो श्रोताओं, हमारा फोन नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी फिरोज फरीदी जी और आशिमा पत्रा जी। तो आज का कार्यक्रम हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ाएंगे।
2: दोस्तों, एक बार फिर हम सामाजिक विषयों पर बातचीत करेंगे, जीवन से संबंधित हम बातचीत करेंगे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान सफल जीवन में होना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। कभी कभी कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से निराश होकर के अपने जीवन ही को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कामयाबी और नाकामी ये ज़िंदगी के दो पहलू हैं और ये हमारी ज़िंदगी में आते और जाते रहते हैं। हम इसे क्या सीख हासिल करते हैं या हम इस असफलता को किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, ये चीज़ जो है वो मायने रखती है। हम इस पर बातचीत करेंगे।
3: सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने भाई बहनों से, अपने जवान बच्चों से बातचीत कर पाऊँ। और ये जो बात आपने बोली कि हम लोग हार जाते हैं, अपना लक्ष्य खो देते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये सोच गलत है। और इसका एक और भी बहुत से पहलू हैं और हमें अपनी सोच को चैलेंज करना है, बदलना है। आज ही आपसे जब बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले कि एक लड़का था जिसका नाम है अनुराग पाठक, वो 12वीं फेल था, लेकिन उसने अपनी लगन से IAS क्लियर किया और आज वो एक IAS ऑफिसर है। क्या आप समझ सकते हैं, हमारा देश तो दीवाना है, हम सब IAS करना चाहते हैं, सारे माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे IAS ऑफिसर्स बने और हम ये, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं।
2: जी बहुत सही कहा कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, और जब हम जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत बार हमें सफलता मिलती है और बहुत बार हमें असफलताओं का सामना करना होता है। और अब जिस तरीके से आपने अनुराग पाठक का मिसाल दिया, ये हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, ये हम सब के लिए जो है उदाहरण हो जाए। बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हमारे सामने हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए चले गए। असफलताओं से टकराते हुए, असफलताओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद जिंदगी में एक नए मुकाम को उन्होंने हासिल किया।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, असफलता भी बहुत जरूरी है। असफल होने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। हमें समझ में आता है, ठीक है ये चीज मेरे से फेल हो गई, तो मुझे अब इसमें से क्या सीख मिली, कहाँ पे मेरी कमी थी, उसको कैसे ठीक करना है। कुछ लोगों को बिल्कुल होता है, जैसे हम श्योर अनुराग पाठक ने कहा होगा मुझे IAS ऑफिसर बनना है लेकिन मैं 12वीं फेल हूँ, तो उसने तरह तरह की रिसर्च करी होगी, समझा होगा कहाँ पर उसको वर्क करना है, कौन से एरिया उसके कमज़ोर है, कौन से एरिया में वो उसकी पढ़ाई अच्छी है, कहाँ पर वो बढ़ सकता है, और उसने उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए IAS क्रैक किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं यंग लोगों को ये कहना चाहूँगी, आपको अगर पक्का मालूम है कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये ज़रूरी, जैसे 12वीं की और ग्रेजुएशन इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है और बहुत अच्छा रहेगा, और मैं आप सबको अर्ज करना चाहूँगी आप सब ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए हैं। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपकी सैलरी अच्छी हो, आपकी फसल अच्छी हो, आपके माहौल अच्छा हो, आपका घर अच्छा, आपका फैमिली अच्छी, आपको एक अच्छे परिवार में आपकी शादी हो, कम से कम ग्रेजुएट तो होइए, आप गिव अप मत करिए। तो यहाँ तक जब ग्रेजुएशन का लेवल है वहाँ पर आपको एक अपना कोर्स करिकुलम पता है, अगर आपकी कमजोरी है आप ध्यान

0: ध्यान दीजिए किस एरिया में मैं कमजोर हूँ। और ज्यादातर आप देखेंगे आपको सब कुछ आता है, हमारे हिंदुस्तानी लोग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं,
1: जी
0: उनका IQ भी बहुत बहुत हाई है, उनका EQ भी बहुत हाई है, इमोशनल क्वोशेंट। प्रॉब्लम पता क्या है, हम लेजी हैं, हम आलसी हैं और हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम लोग गिव अप कर देते कि नहीं चलो छोड़ो कभी और करेंगे। तो वो जो बात है, जो आलस है या
1: जी
0: अपने अच्छे के लिए कुछ मेहनत करना ना करना, ये है आपको इसमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। अभी मैं एक लड़की को काउंसिल कर रही हूँ जो कि राजस्थान में है
1: जी
0: और उनकी शादी हुई और अभी उन्होंने 12वीं पास करी और बुरे नंबर नहीं है, 67% उनके नंबर आए, लेकिन उनके साथ में एक बेबी भी हो गया, अचानक से
1: जी
0: उनकी शादी हो गई। अब वो मुझे ये कह रही हैं कि मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ और मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको ये मोटिवेट करा, नौकरी आपने अगर अभी कर ली, पैसे का एक दफ़ा आपको टेस्ट लग गया तो आप दोबारा पढ़ाई नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर आप चाहती हो आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी मिले, 25,000 से 50,000 से आपका स्केल शुरू या जितनी भी मिलती है और एक अच्छी इनकम हो, तो उसके
1: जी
0: लिए एक दफ़ा आप इंतज़ार करके ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए, साथ में आप कुछ नहीं है, छोटे बच्चे को संभाल रही हैं तो आप पार्ट टाइम कर लीजिए, और
1: जी
0: उसके बाद क्या है कि आप उस पार्ट टाइम में आप जॉब भी कर पाएंगी कोई 4 घंटे की 3 घंटे की,
1: जी
0: और आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लेंगे, और उसके बाद जो आपके नौकरी के ऑप्शंस आएंगे वो कितने अच्छे होंगे, कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको।
1: जी
0: तो ये बात उनसे कई दिनों से हो रही थी और उनको ये बात समझ में आई, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, बच्चा सिर्फ 4 महीने का है, तो उनको ये था कि मुझे नौकरी करनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको सबको ये कहना चाहती हूँ, आपकी जो भी परिस्थिति है, हमारी सरकार ने हमको इतने सारे ऑप्शन दिए, वो चाहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग पढ़ें, ग्रेजुएट बने, MBA करें, MA करें, मास्टर्स करें, तो हमारे पास कोई कमी नहीं और पैसे कोई ज़्यादा फीस नहीं है, सब कुछ वर्कआउट हो सकता है। आप मन तो बनाइए, एक दो मन तो बनाइए, और उसके साथ साथ एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, और अनुशासन से आप इस काम को पूरा कर पाएंगे।
1: नौजवान दोस्तों, आप लोगों के लिए ये हमारी गुजारिश है, हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये प्रोग्राम हम आपके लिए बनाते हैं और ये सारी बातें हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए हम बना रहे हैं। जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते होते हैं या जब हम जॉब की तलाश में होते हैं, तो हमें बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है। और आपके लिए हम इस कार्यक्रम को खास करके बना रहे हैं कि आप जानें कि ज़िंदगी में हमें किस तरीके से जद्दोजहद करनी है, ज़िंदगी में किस तरीके से लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है आशमा जी कि हम ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, असफलताएं आती हैं, और असफलताएं जब आती हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम देखते हैं कि मेरा दोस्त जो था, मेरा साथी जो था, वो तो सफल हो गया, वो कामयाब होकर के आज अच्छे पोस्ट पर है या अच्छा बिजनेस वो कर रहा है, आज अच्छा स्थान समाज में उसको प्राप्त हो गया है, लोग अच्छी नज़र से उसको देखते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो गया, और ये बहुत बड़ी निराशा का कारण होता
0: बन
1: है।
0: जाता है जब हम अपने आसपास देखते हैं। तो देखिए ऐसा है कि हर इंसान की का सफर अलग है, हर इंसान की जिंदगी का मकसद भी अलग है, और
1: जी
0: हर इंसान की परिस्थितियां अलग हैं। अब आपके माँ बाप आपको कितना पढ़ा पाए, उनके पास कितने रिसोर्सेस थे, कितना था नहीं था, तो आज आप यहाँ पहुँचे, लेकिन क्योंकि हमारी भारत सरकार ने हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, हम लोग कोई भी कोर्स करके अपने आप को स्किलफुल, हम अपने स्किल बढ़ा सकते हैं। हम यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पर हमें जो सीखना है हमारे कोर्स के लिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर 300 रुपये में कोर्स हो रहा है, 500 रुपये में कोर्स हो रहा है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए। आप पढ़ाई कीजिए थोड़ी सी अपने शाम को जा करके, और जब वो स्किल आप में आ जाता है, अपने बॉस के पास जाइए, सर मैंने ये भी सीखा है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने ये भी सीखा है, मेरा ये सर्टिफिकेट है और मैं अब ये काम कर सकता हूँ, बॉस से बात करिए, और आप देखेंगे क्योंकि आपने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, चाय में जितना गुड़ डालो उतनी मीठी होगी,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: आप में अगर मिठास की कमी रह गई तो आप अपने माता पिता को मत कोसिए, मेरे माँ बाप तो कितने बेकार है, उसके माँ बाप को देखो वो कितने अच्छे, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, नहीं, ये अगर आप करेंगे तो बहुत गलत करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप गॉड से दिए गए हैं, परमेश्वर की वो आपका एक वरदान है, उनको ऐसे कोसना नहीं है, लेकिन आपको अब मेहनत करके अपने अपने टैलेंट को बढ़ाना है, अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, और सब कुछ अवेलेबल है।
1: लेकिन कभी अशमा जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में एक बार रुक करके अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि हमने किसी गलत चीज़ का चुनाव तो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर लिया है जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है।
0: बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें अपने घर वालों

0: के साथ बैठना चाहिए, अपने ऑफिस के कोलीग्स जो हमारा भला चाहते हैं उनके साथ, और जो हमारे कुछ खास दोस्त हैं और उनके साथ बैठ करके कुछ डिस्कशंस करने चाहिए। साथ में अगर हो सके हमें किसी ऐसे बड़े इंसान जो हमसे 4-5 साल बड़े हैं या जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 4 साल स्टेप्स हमसे आगे हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, सर मैं क्या आपके साथ 10 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, सिर्फ 10 मिनट का, और आप, ये मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मेरी प्रोफेशनल करियर में, क्या आप मुझे गाइड करेंगे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे और किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए था, किसी और नौकरी में, किसी और धंधे में होना चाहिए था। तो ये आप ऐसे कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं, पूछिए लोगों से, फीडबैक लीजिए, तो आपको मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता और हम उसी चीज़ पर चले जा रहे हैं, हो सकता है हमें रास्ता बदलने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल सही, इसलिए कि हमारे सामने उदाहरण है कि बहुत सारे इंजीनियर थे या बहुत सारे डॉक्टर थे और ज़िंदगी में शायद उन्होंने बहुत अच्छे इंजीनियर के रूप में काम नहीं किया या बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में काम नहीं किया, लेकिन जब वो IAS ऑफिसर बने या IPS ऑफिसर बने, उन्होंने लाइन अपनी बदली और उन्होंने तैयारी की और उसके बाद वो IAS के रूप में या IPS के रूप में वो चुने गए और उन्होंने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद अच्छे IAS ऑफिसर वो बने या अच्छे IPS ऑफिसर बने और समाज को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ देने की कोशिश की। इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में अगर बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो तो हमें एक मिनट रुक करके अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, अच्छे सलाहकारों के साथ बैठ करके सलाह लेने की ज़रूरत है कि क्या हमने ज़िंदगी में जो चुनाव किया है वो सही है या नहीं है। इसलिए कि हमारे अंदर हो सकता है कि गुण कुछ और है करने का, क्वालिटी हमारे अंदर कुछ और है, कोई कला हम किसी और किसी कला में हम पारंगत हैं, लेकिन दुनिया को देख करके हम दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, भेड़ चाल चलना जिसको कहते हैं कि सभी डॉक्टर बन रहे हैं तो चलो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, या माता पिता भी कहते हैं कि हमें हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आप अपनी लियाकत को देखिए, अपनी खूबियों को देखिए
0: और अपनी जो कमियां हैं उनको आप मानिए कि हाँ ये मेरी कमियां हैं और मेरी ये खूबियां हैं, उनको समझिए, और जब आप उन लोगों को ढूंढेंगे जो आपको सलाह देंगे, आप ये देखिएगा कि वो सचमुच में उस एरिया में एक्सपर्ट हैं और उन बातों को समझते हैं, वो आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे। उन लोगों के पास मत जाना जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ये मैं कहना चाहूंगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने कुछ नई बातें सीखी हों। मत घबराइए, मत डरिए, अगर ज़िंदगी में नाकामी हाथ लगती है, अगर ज़िंदगी में असफलता का सामना करना पड़ता है तो कभी भी आप हिम्मत न छोड़ें, कभी भी आप अपने हयाव को खोने न दें, बल्कि ज़िंदगी का मुकाबला करें, एक बार रुक करके अपने चयन पर, अपने चुनाव पर जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके बारे में भी गौर करें कि आपका चुनाव जो है सही है या नहीं, इसके लिए आप दूसरों से मशवरा लें और सलाह लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़िंदगी में सफलताओं को प्राप्त करेंगे और आपके लिए हम अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं, सफल जिंदगी की कामना करते हैं।
2: और श्रोताओं, अब हम धन्यवाद देंगे अपने कुछ श्रोताओं का, जिनका नाम है कुलदीप कुमार कानपुर से, सुनीता मौर्य बहरेच से, शैलेंद्र कुमार जौनपुर से, राजेश पाठक गौना से और संदीप यादव जी बाराबंकी से। हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिसनर मीटिंग में हिस्सा लिया, जी हाँ, और अपने विचार हम तक पहुँचाए। आप सबका धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को, अनुभवों को हमसे साझा करें। हमारा नंबर है
3: 8860088827, जी हाँ, 8860088827।
2: और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो आप मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके ऐसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
3: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
3: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए 2-3 चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो 2 चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
2: जी।
3: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास BA MA की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से

0: अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। तो इस तरह की जो योजना है, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण का,
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है, तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, IT से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है।

0: वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो हैं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो हैं वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
0: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल

0: हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं
1: जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो एक अवसर और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
2: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
1: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इसमें। और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखें कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट

0: वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जल खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है।
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती या, और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट में 2,000 के हैं,
0: तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनके गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है किसान से, लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं, वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं,

0: सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खास तौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, तभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
2: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई भी, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो

0: ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया जो नए चार लेबर कोड आए हैं कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी एक रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है,
1: जी जी
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा, और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है,
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं अभी गया था, पिछले दिनों जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा, अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई,
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है।

0: इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनकी जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास
2: और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
0: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
2: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
0: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल को कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो खोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय, जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
2: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
3: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
2: जी,
3: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद, 100 हो गई।
2: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा
3: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
3: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष का प्रसारण अभी किया जा रहा था।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म दिल्ली 6 से।

जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे प्रसून जोशी का लिखा यह गीत फिल्म दिल्ली 6 से। इस गीत को संगीत दिया था एआर रहमान ने। श्रोताओं, दिल्ली 6 के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण

0: भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का

0: है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़

0: रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister

0: योग के बैन अलावामी दिन की तकरीबात की कयादत करेंगे। कल नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान सख्त निगरानी में कराया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का हवाला देते हुए आबनाए हुरमुज को बंद कर दिया है। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में तीसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के तीनों मैच जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत की यह कहते हुए सताइश की है कि उन्होंने अपनी नजरियासाज हुक्मरानी और आलमी रहनुमाओं के साथ तामीरी राबतों के जरिए आलमी मंजरनामे पर भारत के वकार और उसके असर व रसूख को नुमाया अंदाज से बढ़ाया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में राय रंगपुर के मकाम पर जनाब मोदी की मौजूदगी में एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है। ओडिशा में मोहन चरण माझी सरकार के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया के कई खित्तों में टकराव और गैर यकीनी के हालात हैं, भारत ने सिफारती राबतों और बाहमी मुफाहमत के जरिए तनाज़ात को हल करने की लगातार वकालत की है। जलसयाम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की पेशरफ्त को ये कहते हुए सराहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मशरकी भारत की नशोनुमा में अहम रोल अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज के पूर्व उदय नजरिए का मकसद मशरकी भारत के तेज रफ्तार फरोग के जरिए भारत की तरक्की को रफ्तार देना है।
1: उड़ीसा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: योग का बैन अलावामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अलावामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। इतना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीम शान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये और दूसरा गाना था

0: सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाच मन मोरा मगन सिकदा धिग धिग।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: मनी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हाँ।

गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

प्रिय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10,00,000 रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55,00,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर

0: क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया,
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes

0: and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
1: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
0: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna tilwada taal mein nibaddh hai jiske bol hain vaari jaun re tum pe. Drut rachna teen taal mein hai jiske bol hain chalo re mai ram siya darshan. Aapke saath harmonium par sangat kar rahe hain रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
0: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektaal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektaal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Rag Sohini, presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय

0: दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।